वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो शशि के साथ।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

0: 91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला
1: 91.2 MHz पर ए तुम्हारा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कहने श्रोताओं, मैं या तुम भी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हुई हूँ कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महकता। श्रोताओं कर देना अज दे कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे दे गीत के कहने बहुत सारी इं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज।

कंचन धर्मशाला गणेशोदा तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका गन्ने तो हाँ सारे इन्हीं बनी रिया रेडियो कंचन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ, इस वक्त तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे ना माटी दी महक जी। श्रोताओ ता बढ़ते ना कार्यक्रम च अगे कने सुनदे ना कार्यक्रम दा अगला गीत। तुहां सारे इं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

क्या नुआ दशमलव 2 MHz पर ये तुम्हा सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तुम्हा सारे कार्यक्रम सुना दे ना माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ते न कार्यक्रम च आगे कने सुनने न कार्यक्रम दा अगला गीत

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ। यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex Plus Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, समय उसे भी वही पीड़ा देकर 100-100 बार रुलाता है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में लौट आया तो क्या होगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को ये ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी ये ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
5: मैंने तो गलती कर दी तुमसे शादी करके।
6: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर दी मैंने। पता भी कितने दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
5: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वाले को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।
7: Oh, shit!

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप है इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: everybody.
1: Hi!
0: Smashing! Groovy! Fab!
2: Terrific! Fantastic!
3: What a beaut!
0: ये तो टाइम टाइम की बात है जॉनी, टाइम टाइम की बात।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आज के कार्यक्रम में श्रोताओं बस इतना ही। अब अपनी रेडियो दोस्त पिंकी को दीजिए इजाजत और यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली।

शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540 प्लस टॉप कंपनियां और 1250 प्लस से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग। हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, समय उसे भी वही पीड़ा देकर सौ सौ बार रुलाता है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में लौट आया तो क्या होगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
5: मैंने तो गलती कर दी तुमसे शादी करके।
6: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर दी मैंने। पता भी कितनी दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
5: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वाले को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।

0: दोस्तों कहते हैं कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब लोग साथ होते हैं तब उनकी अहमियत का एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तब अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। वक्त कभी रुकता नहीं और रिश्ते हमेशा इंतजार नहीं करते, इसलिए जो अपने हैं उनकी कद्र, सम्मान और प्रेम आज ही व्यक्त कर दीजिए, क्योंकि बाद में अक्सर सिर्फ यादें और अफसोस ही हमारे पास बचता है। नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, रुचिका की ढेर सारी बातों के साथ। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी सेहत का ध्यान आप सभी रख रहे हैं इस बदलते मौसम के मिजाज के साथ। तो बहुत ही प्यारी सी सुबह की शुरुआत हुई है, ताजी ताजी हवा में जो है एक फ्रेशनेस के साथ नई एनर्जी, नया उत्साह और एक नए दिन की शुरुआत। जी दोस्तों, तो हर पल की शुरुआत खास होनी चाहिए और आज के दिन की खास तो बनती है, क्योंकि आज 5 जून 2026 का दिन है और बिल्कुल खास दिन है दोस्तों, शुक्रवार का दिन है। तो आज क्या खासियत है? जिस बहुत ही प्यारी सी हवा में, स्वच्छ हवा में आप सांस ले रहे हैं, इस प्यारे से प्रकृति के नज़ारे के साथ जिसे देखकर आपकी सुबह की शुरुआत हुई, इन प्यारी प्यारी सी धौलाधार की पहाड़ियों का नज़ारा देखकर, प्यारे प्यारे से खूबसूरत से हरियाली देखकर, तो क्या लगता है दोस्तों आपको, इन सब बातों के पीछे हमारा क्या दायित्व है, हमारा क्या कर्तव्य है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना स्वार्थ है या फिर कुछ और? दोस्तों आज का दिन बहुत खास है और हमारी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातों से जुड़ा हुआ है। तो आप सभी वैसे तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, ये प्यारा सा सफर शुरू हो चुका है और अब ये तो आप सभी के लिए जानकारियों से भरा रहने वाला है। फिर वो चाहे बातचीत हो या फिर हमारे आसपास की न्यूज जानकारियां हो। जी दोस्तों, तो आइए बातचीत के साथ गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम की शुरुआत तो हमने कर दी है, लेकिन प्यारे से गीत का इंतजार है आप सभी को, जिससे कि मनोरंजन की शुरुआत होगी। तो आइए दोस्तों, देर किस बात की है, हमारे हाथों में है प्यारे से गीत भी और बातें भी। तो अपनी बातचीत को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और आप सभी को लेकर चलते हैं कार्यक्रम में इस प्यारे से, खूबसूरत से, मीठे से गीत की ओर।
1: सत श्री अकाल, नमस्कार।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ जी। और इन प्यारे प्यारे से गीतों के सफर में और साथ ही साथ कुछ खास बातों के सफर में जिंदगी का सफर और भी प्यारा और भी खुशनुमा हो जाता है। और दोस्तों जिंदगी में अगर खुशी के साथ जीना चाहते हैं, शांति और सुकून के साथ जीना चाहते हैं, तो कुछ हमारे आसपास की खास बातें जो कि हमारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जुड़ी होती हैं, उन्हें नज़रअंदाज कभी मत कीजिएगा जी। दोस्तों आज 5 जून का दिन है, तो क्यों है खास? क्योंकि आज के दिन आप सभी मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस। तो दोस्तों प्रकृति का ये जो सुंदर सुंदर सा नजारा आप सभी एंजॉय करते हैं, इसके पीछे हमारा क्या योगदान है? प्रकृति हमें बिन मांगे फ्री में इतनी सारी चीजें देती है, लेकिन हम बदले में कुछ भी नहीं करते इसे सेव करने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, एक तरह से सुरक्षित रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और आज तक सोच कर देखिए कि आखिर किया क्या है। कभी पेड़ पौधे लगाए भी तो क्या सिर्फ फोटोज खींचने के लिए लगाए, उनकी केयर भी की? क्योंकि आज के समय में दोस्तों ये जो हरियाली देखने को हमें मिल रही है, ये जो प्यारी प्यारी सी, क्योंकि हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं खास करके, तो तभी तो यहाँ प्रदूषण नहीं होता है। जहाँ पेड़ों से भरी हरियाली और साफ सुथरा पानी, तो यही तो हमारी इस प्रकृति को और सुंदर, इन प्यारे प्यारे से जो पहाड़ हैं, कहीं ना कहीं हम अपने स्वार्थ के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो क्या आपका भी इस नुकसान में योगदान है? हम इतने स्वार्थ में एक तरह से आंखें बंद करके चल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ लेने के लिए सोचते हैं, और जब बात आती है देने की तो उसकी बारी हम पीछे हो जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, खैर ये तो जुड़ी है आज के दिन से कुछ खास बात, लेकिन फिलहाल नजर डालते हैं मौसम पे। तो आप सभी को बता दें इस समय धर्मशाला का तापमान जो है वो आप देख सकते हैं दोस्तों 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है आप सभी महसूस कर सकते हैं। और आंखों देखा हाल अगर मैं आप सभी को बताऊं तो सुबह की शुरुआत बहुत ही प्यारी सी हल्की हल्की सी बूंदाबांदी के साथ हुई है, और गर्मियों के समय में चाहे हल्की सी ठंडी हवा भी चल पड़े तब भी एक सुकून की सांस लेते हैं, एक राहत की सांस लेते हैं। तो ये है मौसम की अपडेट, और मौसम विभाग का क्या कहना है वो भी हम जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले एंजॉय करेंगे कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत। तो एंजॉय कीजिए अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका की तरफ से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: चलो सो बहुत ही प्यारा सा और ये मीठा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन हरमशाला से, खास करके अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका की तरफ से। जी दोस्तों, और बहुत ही प्यारा सा ये कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, जिसके साथ आप सभी की सुबह की शुरुआत तो खैर हो ही चुकी है, लेकिन अब दिन की शुरुआत को और भी प्यारा बनाने के लिए आप सभी जुड़े हुए हैं अपने अपने रेडियो सेट के साथ। बिल्कुल जुड़े नहीं है, लेकिन हाँ, साथ ही साथ अपने काम भी कर रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं। तो बहुत ही ये इंटरेस्टिंग सा सफर रहता है। बिल्कुल दोस्तों, अभी बहुत सारी बातें और बहुत सारी जानकारियां, और खास करके ये विचार करना कि आखिर हमने अपनी प्रकृति के लिए क्या किया, अपने पर्यावरण के लिए क्या किया, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। जानेंगे जरूर, लेकिन समय है हमारे आसपास की कुछ खास जानकारियां जानने का। जी दोस्तों, 9:20 हो चुके हैं और अब प्रादेशिक समाचारों की ओर चलते हैं, उसके बाद फिर से वापस आएंगे अपनी इस बहुत ही खास बातचीत के साथ।
1: के प्रयासों को भी सराहा। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व CPS नीरज भारती ने प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल। प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश, नगर निकायों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में विधायक नहीं डाल सकेंगे वोट। और प्रदेश के कई स्थानों पर आज अंधड़ बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। आज पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर राजधानी शिमला में एंटी चिट्टा व स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने इस मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विजेताओं व प्रतिभागियों को सम्मानित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हिमाचल पुलिस व जनगणना कार्य निदेशालय हिमाचल प्रदेश के सहयोग से एंटी चिट्टा एवं स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसको सुबह 6:30 राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में युवा विद्यार्थी, शिक्षण संस्थान, सरकार विभाग, स्वयंसेवी संगठन, महिला मंडल, खेल संगठन और आम नागरिकों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। अभियान युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली, फिटनेस, अनुशासन, पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित करेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
1: इस बीच राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने मैराथन के दौरान उपस्थित युवाओं व लोगों को पर्यावरण संरक्षण व नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है और इस धरती माँ के संरक्षण के लिए सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से प्रयास करने होंगे। उन्होंने नशे के खिलाफ हिमाचल पुलिस के प्रयासों व युवाओं की भागीदारी की भी सराहना की। इस बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भाजपा प्रदेश भर में 1 माह का पौधरोपण अभियान चलाएगी। इस अभियान में जनभागीदारी से हजारों पौधे रोपित किए जाएंगे। प्रदेश भाजपा के अनुसार इस दौरान विभिन्न जिलों, मंडलों व बूथ स्तर तक पौधरोपण कार्यक्रम के जरिए आम जनमानस को पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा नेतृत्व सहित जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान पौधरोपण करेंगे। दूसरी ओर आज प्रदेश भर में भी विश्व पर्यावरण दिवस पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें स्वयंसेवी संस्थाएं, महिला युवक मंडल व अन्य लोग पौधरोपण करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व CPS नीरज भारती ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है। नीरज भारती ने लिखा है कि ये फैसला उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वे हमेशा से कांग्रेस पार्टी के लिए एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस सरकार के पिछले 3.5 वर्षों के कार्यकाल में पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता पर असंतोष व्यक्त किया। गौरतलब है कि नीरज भारती के पिता चंद्र कुमार प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत स्थानीय विधायक को संबंधित नगर परिषद या नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने इस मुद्दे से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के बाद ये आदेश जारी किए हैं। न्यायालय के इन आदेशों के बाद विधायक संबंधित नगर परिषद व नगर पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। न्यायालय ने राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि प्रदेश के नगर निकायों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को बिना किसी बाधा के पूरा करें। यह चुनाव केवल निर्वाचित पार्षदों की इच्छा और बहुमत के आधार पर ही होगा। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी। लाहौल स्पीति जिले की दूरस्थ पीन वैली में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर व आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेवा इंटरनेशनल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान जहां कई इलाकों में ग्रामीण लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य की जांच की जा रही है, वहीं विद्यालयों में विद्यार्थियों को आत्मरक्षा के उद्देश्य से भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
2: स्पीति के दूरस्थ पीन वैली में सेवा इंटरनेशनल द्वारा 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर और आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम बहार इन्फोकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से चलाया जा रहा है। कुमरी गांव में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सगनम के मेडिकल टीम ने ग्रामीणों को निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श और दवाइयाँ उपलब्ध करवाई। शिविर में डॉक्टर तशी दोरजे और फार्मासिस्ट रतन बोस सहित स्थानीय स्वयंसेवकों ने सेवाएं दी। वहीं सगनम और गुलिंग के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण ब्लैक बेल्ट कराटे विशेषज्ञ राजेंद्र कुमार ने दिया। सेवा इंटरनेशनल ने बताया कि आने वाले दिनों में मुद तेलिंग और आसपास के अन्य गांवों में भी स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: युवा सेवाएं व खेल मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा है कि जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के हर गांव का विकास और जन आकांक्षाओं को पूरा करना उनकी विशेष प्राथमिकता है। ये बात उन्होंने ग्राम पंचायत द्रमण के शिव मंदिर सुभाष नगर परिसर में नव निर्मित शेड के लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र में जमीनी विकास के लिए स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका सबसे अहम होती है। लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के साथ साथ चंबा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जल स्रोतों की स्वच्छता व संरक्षण को लेकर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया है। इसी कड़ी में पर्यटन नगरी डलहौजी स्थित सुभाष बावली में जल स्रोतों की सफाई के साथ इसके संरक्षण को लेकर लोगों को भी जागरूक किया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
3: जल स्रोतों के संरक्षण एवं स्वच्छता के प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाया गया ये विशेष अभियान काबिले तारीफ है। इस अभियान के साथ साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्कूलों में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है। इस दौरान विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों तथा NDPS अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी प्रदान की जा रही है ताकि युवा पीढ़ी को इससे दूर रखकर शिक्षा, खेल एवं अन्य सकारात्मक गतिविधियों की ओर अग्रसर किया जा सके। ऐसे अभियान समाज में बदलाव लाने के लिए काफी सार्थक साबित होंगे। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
1: प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं रुककर वर्षा का दौर भी जारी है। मौसम विभाग ने कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में आज अंधड़ बारिश व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, जबकि चंबा, कांगड़ा और सोलन में येलो अलर्ट जारी किया है। कल 6 जून को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और आंधी चलने की आशंका है। मौसम के तेवरों से तापमान में गिरावट आने से निचले व मैदानी क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। वहीं किसान इस बारिश को मक्की की बिजाई के ये फायदेमंद बता रहे हैं।
4: मेरा नाम भगत राम शर्मा, यही मांझो का निवासी हूँ। हमारे खेतों में नमी हो गई है, बारिश पड़ी है और खेती अच्छी बिजाई कर रहे हैं। आशा है कि और बारिश हो जाएगी 2-4 दिन में तो हमारी फसल अच्छी हो जाएगी, जिससे हमारे सब लोगों की खुशी होगी।
1: और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को सुर्खी दी है, नगर निकायों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव में विधायकों को वोट डालने का अधिकार नहीं। दैनिक भास्कर लिखता है, नगर परिषद नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव में विधायक नहीं डाल सकेंगे वोट। पंजाब केसरी ने खबर दी है, हिमाचल में लघु व सीमांत किसानों के भूमि कब्जे नियमित करने की नीति तैयार। वहीं दिव्य हिमाचल के शब्द है, रेगुलर होगा छोटे किसानों का भूमि अतिक्रमण, 20 बीघा की अधिकतम सीमा के साथ सरकार की नई पॉलिसी तैयार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज शिमला में एंटी चिट्टा व पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन का हुआ आयोजन। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा, पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत रूप से सभी को करने होंगे प्रयास, नशे के खिलाफ पुलिस के प्रयासों को भी सराहा। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व CPS नीरज भारती ने प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल। प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश, नगर निकायों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में विधायक नहीं डाल सकेंगे वोट। और प्रदेश के कई स्थानों पर आज अंधड़, बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

दोस्तों इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी दोस्तों, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के साथ शुरुआत आप सभी कर रहे हैं अपने दिन की डेली रूटीन के साथ। इंजॉय। जी दोस्तों, आज का दिन यानी कि 5 जून का दिन सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर पर एक तारीख बदलने या फिर सोशल मीडिया पर हरे भरे पेड़ों की तस्वीरें पोस्ट करने का नहीं है। आज का दिन रुककर सोचने का है कि हम कितने खुशनसीब हैं ना कि हम जो हैं वो धर्मशाला में रहते हैं, जहां सुबह की शुरुआत पहाड़ों के दीदार से होती है और सांसों में शुद्ध हवा खुलती है। जी दोस्तों, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि इस प्रकृति ने हमें जो कुछ भी मुफ्त में दिया, बदले में हमने क्या दिया या हमने क्या किया? सिर्फ कुछ स्पेशल मोमेंट्स को खास बनाया, वहीं तक सीमित रह गए, या फिर उसे अपनी जिंदगी का हर पल के लिए पार्ट बनाया? हर पल ना सही, हर दिन के लिए, या कुछ दिन ब्रेक देके, या सिर्फ और सिर्फ आज दिन के लिए ही सीमित है? क्योंकि हम बहुत एनर्जी के साथ, आज का दिन तो हम इतने उत्साह के साथ सेलिब्रेट करेंगे, इतनी मोटिवेशन, इतनी एनर्जी की पूछिए ही मत। लेकिन जैसे ही आज का दिन गया, वैसे ही वो एनर्जी फीकी सी हो जाती है, ढीली सी हो जाती है। ये क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों, आज के दिन तो बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, फोटोज खिंचवाई जाएंगी, सोशल मीडिया पे भी हर जगह आपको पर्यावरण दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं तो देंगे ही देंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन रियलिटी में आप क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। रियलिटी में हम क्या कर रहे हैं? पहाड़ों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करना है। तो क्या हम प्रकृति को बदले में ये दे रहे हैं? क्या ये हमारा दायित्व है? क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? माना कि आपको जरूरत थी, आपने पेड़ों को काट लिया। बिल्कुल, इंसान है, धरती पे रहते हैं और ये प्रकृति हमें फ्री में चीजें दे रही है, तो हमें इसका यूज भी करना। ऑब्वियसली जब हम काटेंगे तब नए पेड़ पौधे निकलेंगे। लेकिन क्या आपने, अगर आज के दिन में माना कि 2 पेड़ काटे या 5 काट लिए, तो बदले में क्या 1 भी लगाया? और अगर लगा भी दिया तो क्या उसकी प्रॉपर हर टाइम केयर की, उसको पानी दिया, उसके जो है अच्छे से जो उसकी ग्रोथ है उसमें आपने हेल्प की? सबसे बड़ा सवाल तो जिंदगी का ये है। ये सिर्फ हम एक दूसरे को बातों से, विशेस के साथ या फिर फोटोज शेयर करके सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन जो रियलिटी में प्रकृति को चाहिए हमसे, हम वो नहीं कर पाते। वो हम अपनी इस स्वार्थ से भरी दुनिया में, स्वार्थ से भरी जिंदगी में सब भूल जाते हैं, सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। लेकिन हमारे फायदे के चक्कर में कहीं ना कहीं हम खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। लेकिन हमें ये बात अभी समझ नहीं आएगी, समझ आएगी जब समय हाथ से निकल चुका होगा। मैंने शुरुआत में बात कही थी दोस्तों कि समय रहते, चाहे इंसान है चाहे चीजें हैं, कद्र कर लीजिए, क्योंकि जब समय हाथ से निकल गया, ये वक्त है, ये वक्त किसी के लिए रुकता नहीं, ये जब हाथों से फिसल गया तो फिर हाथों में सिर्फ और सिर्फ पछतावा रह जाएगा। फिर तब सोचेंगे कि ये कर लिया होता, वो कर लिया होता, तो तब तो फिर वो सिर्फ सोच में ही रह जाएगा। तो क्यों ना, अब समय है और अभी हमें संभलने का समय है, तो क्यों ना संभला जाए, अपनी इस मानसिक सोच को बदला जाए और कुछ पुण्य का काम किया जाए। कुछ अच्छे कर्म इस दुनिया में आए हैं तो जरूर करके जाए। जी दोस्तों, तो सोचकर देखिए इस बात पे, थोड़ा सा विचार कीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी खास बातें हैं आप सभी के साथ साझा करने के लिए। और ये सवाल खुद से कीजिए कि हमने क्या किया और क्या करना चाहिए
उसके बाद एक और सवाल के साथ रुचिका आप सभी के साथ जुड़ेगी, लेकिन उससे पहले इंजॉय करेंगे कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से।

बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही प्यारे प्यारे से जब पक्षियों की आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है ना, सुरीली सी मीठी सी आवाज, तो सच में सुबह की शुरुआत इतनी प्यारी होती है कि क्या ही कहें। और आजकल जो हम इस स्वार्थ की दुनिया में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन पशु पक्षियों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। पेड़ पौधों को तो पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन पक्षियों के घरों को उजाड़ रहे हैं। अब कैसे उजाड़ रहे हैं दोस्तों? जैसे ही गर्मियों का समय आता है, हम बिना सोचे समझे रात को जंगलों में आग लगा देते हैं, जब पक्षी आराम कर रहे होते हैं, अपने घरों में, अपने घोंसलों में रह रहे होते हैं, और हम बिना जाने बिना समझे ये शरारतें कर देते हैं। कई बार हम आग लगाकर आकर अपने घरों में सो जाते हैं, और वो आग फैलते फैलते हो सकता है किसी के घर तक पहुंच जाए। आपने जानबूझकर, मतलब कि नहीं लगाई, लेकिन अनजाने में ही सही, आपसे गलती तो हो गई। तो अगर आप कोई भी स्टेप उठा रहे हैं, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हाथों में होनी चाहिए। हम कोई भी जिंदगी में ऐसा काम ना करें जिससे कि किसी को नुकसान पहुंचे, क्योंकि इन पशु पक्षियों के साथ हमारी प्रकृति का जो ये नजारा है ना, ये और भी खूबसूरत होता है। दोस्तों, जहां लोग कंक्रीट के जंगलों में शुद्ध हवा के लिए तरसते हैं, वहीं हम जब सुबह खिड़की खोलते हैं, तो धौलाधार के बर्फीले पहाड़ मुस्कुराते हुए हमारा स्वागत करते हैं। भागसुनाग का झरना हो, नड्डी की शाम हो, या फिर मैक्लोडगंज की रौनक, कुदरत ने हमें दिल खोल कर नवाजा है। लेकिन अक्सर हम एक बात भूल जाते हैं, खूबसूरती अगर गॉड गिफ्टेड है, तो उसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है। आजकल जब त्रियुन ट्रैक पर या करेरी लेक के रास्तों पर आप सभी देखते होंगे प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के पैकेट बिखरे हुए, तो सच मानिए दिल टूट जाता है उस समय। क्या हम अपनी इस जन्नत को कचरे का ढेर बनने देंगे, पर्यावरण को दूषित होने देंगे? अपने इस प्यारे से प्लेस को, पर्यावरण के एक इस खूबसूरत से नज़ारे को, जो कि प्रकृति को और भी प्यारा बनाता है, और भी हमें एक शांत भरी जगह में रहने का मौका देता है, तो उसे हम ऐसे ही गवा देंगे, ऐसे ही हाथों से जाने देंगे? या अभी भी समय है जागने के लिए, हम जागेंगे, या दूसरों के सहारे उसे बस आंखें बंद करके आगे निकल जाएंगे? क्योंकि हम ऐसा ही करते हैं। हम अगर अपने इन टूरिस्ट, आप सभी जानते हैं दोस्तों, धर्मशाला है, और धर्मशाला टूरिस्ट प्लेस है, एजुकेशन हब है, डिफरेंट डिफरेंट जो है जगह से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आते हैं, और हमारा ये दायित्व है, टूरिस्ट का भी ये दायित्व है, जहाँ भी हम घूमने के लिए जा रहे हैं, तो उस प्यारे से प्रकृति के नज़ारे को प्यारा ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम पानी की बॉटल्स लेकर जा रहे हैं, कुछ खाने के लिए लेकर जा रहे हैं, तो वो रैपर्स अगर हम अपने साथ या कोई डस्टबिन है अगर उसमें डालें तो शायद बेहतर है। लेकिन हम जहाँ भी बैठ जाते हैं खाने के लिए, या आराम करने के लिए, थोड़ा रेस्ट फरमाने के लिए, या फिर यूँ कहें कि उस प्यारे से सुंदर से नज़ारे को इंजॉय करने के लिए, तो हम वहीं खाकर वो रैपर्स वहीं फेंक देते हैं, वो पानी की बॉटल्स वहीं रहने देते हैं, कि जिनकी ड्यूटी है, जो यहाँ पे देख रेख करते हैं, वही उठाएंगे। क्यों, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? या हम जो आसपास के लोग हैं, अगर हम वहाँ से गुजर रहे हैं, तो क्या हमारा कोई दायित्व नहीं है अपनी इस प्यारी सी जगह को प्यारा बनाए रखने का? क्या हम इसके लिए भी दूसरों के सहारे रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये प्यारी सी जन्नत हमें मिली है, और इसे सहेजना, इसे सुरक्षित रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ज़रूर अपना योगदान ऐसे इस तरह से दीजिए, ना कि रील्स डाल के या पोस्ट करके, या फिर ऐसे लोगों को बातें सुना। दोस्तों, जो रियलिटी में हमारे दायित्व है, ज़रूर डालिए, रील्स भी डालिए, पोस्ट भी करिए, लेकिन जो रियलिटी में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे मुंह मत फेरिए, उससे नज़रें मत चुराइए।
कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने कहा ना दोस्तों कि सबसे पहले तो हमें अपनी मानसिक सोच बदलने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल दोस्तों सोचिए, और अगर कहीं आप ऐसा कर रहे हैं तो ज़रूर अपने दिमाग पे जोर डालिए और उस सोच को बदलने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। और पहाड़ों की बात हुई है दोस्तों, तो एक प्यारा सा पहाड़ी गीत ना हो, हिमाचली फोक सॉन्ग ना हो, तो कार्यक्रम

तो बहुत ही प्यारा सा ये पहाड़ी लोकगीत आप सभी ने एंजॉय किया, और सचमुच अब लग रहा है ना कि हम वाकई में अपने पहाड़ों की बात कर रहे हैं, अपने इस पहाड़ी कल्चर की बात कर रहे हैं। जी दोस्तों, पहाड़ी है तो पहाड़ी होने का गर्व जो है ज़रूर होना चाहिए। और कहते हैं ना दोस्तों, इसी से हमारी एक अलग पहचान जो है वो चाहे कहीं भी चले जाइए वो सबके सामने निखर कर आती है। और भोले भाले से लोग हम पहाड़ी सबके दिलों में जो है सबके लिए प्यार और अपनापन जो है कूट कूट कर भरा होता है। तो बिल्कुल इसी से हमारी ये खासियत झलकती है, और जिस तरह से हमारी ये पहचान बनती है, हमारी ये पहचान दूसरों के सामने झलकती है, उसी तरह से हमें अपने यहाँ की यानी कि हिमाचल की ही बात करें, कांगड़ा की ही बात करें, धर्मशाला की ही बात करें, तो इन प्यारी प्यारी सी खूबसूरत से जगहों को और भी खास बनाया जाए ताकि दूर दूर से लोग इंजॉय करें यहाँ पे, और जो सुकून उन्हें अपने वहाँ नहीं मिल पाता, शायद हमारे इन प्यारी सी धौलाधार की वादियों में वो सुकून ढूंढ सकें। क्योंकि दूर दूर से लोग ठंडी जगहों में आना पसंद करते हैं। अब गर्मियों का समय है तो बाहर आप सभी जानते हैं प्रदूषण से कितना बुरा हाल हो जाता है, और वहाँ एक कहते हैं ना कि हवा, साफ स्वच्छ हवा तक सांस लेने के लिए जिन्हें नसीब नहीं होती है, तो सोचिए हम कितने लकी हैं, कितने खुशनसीब हैं। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, फ्री में चीज़ें मिलती हैं तो उसकी वैल्यू हम अक्सर भूल जाते हैं, तो इसीलिए हम कदर नहीं कर पाते। तो ये सोचना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और बेहद ज़रूरी इस पे विचार करना है। तो फिलहाल आइए दोस्तों, समय हो गया है कार्यक्रम में एक छोटे से अंतराल का, क्योंकि ये तो हमारी डेली रूटीन से जुड़ी कुछ खास बातें हैं, इन पे जितना हम बात करें शायद उतना ही कम है। तो जितना सोच सकते हैं सोचिए, विचारिए, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें हैं, बहुत खास खास सी बातें हैं जो आप सभी के साथ साझा करनी है। तब तक आप भी सोच कर रखिए कि ऐसी कौन सी खास बातें हैं जिससे कि हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, उसे सेफ रख सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं। तो तब तक लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, फिर से जुड़ते हैं आप सभी के साथ।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ। यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी एक नई उत्साह के साथ, एनर्जी के साथ जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। दोस्तों, किसी से बदला लेने की सोच जिंदगी में कभी मत रखिए, क्योंकि समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं होता। जो फल पेड़ पर खराब हो जाते हैं, उन्हें गिराने के लिए किसी को धक्का नहीं देना पड़ता, वो अपने आप ही जमीन पर आ गिरते हैं। इसी तरह से गलत कर्म करने वाले लोगों को भी उनके कर्मों का फल समय आने पर स्वयं ही मिल जाता है। इसलिए अपनी ऊर्जा बदले में नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व, सफलता और सुकून को बेहतर बनाने में लगाइए, तो शायद जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाए। फिलहाल कार्यक्रम में अच्छा करना है तो जरूरत है एक प्यारे से गीत की। तो आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

तो बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी के कानों तक पहुंचा है जी दोस्तों, रेडियो वंचन धर्मशाला के माध्यम से। और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपने रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, रुचिका की ढेर सारी कुछ खास खास सी बातों के साथ। तो फिलहाल रुचिका अपनी थोड़ी सी इन खास बातों को ब्रेक देगी और आप सभी को लेकर चलेगी जानकारियों की ओर। जी दोस्तों, बातों के साथ साथ जानकारियां भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए जानते हैं एक बहुत ही खास जानकारी, क्योंकि आज के दिन हम पर्यावरण को सेव रखने की बात कर रहे हैं। कैसे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, क्या योगदान अपना दे सकते हैं, तो उसी से जुड़ी एक खास जानकारी है। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज के दिन शिमला में स्वस्थ पर्यावरण और चिट्टा मुक्त हिमाचल विषय पर एक विशाल मैराथन का आयोजन किया। पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस मैराथन में करीब 5,000 प्रतिभागी भाग लेंगे। ये जानकारी पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव तथा भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार सिंगला ने दी। जी दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हम एक तरह से पर्यावरण को सेव रखने की बात कर रहे हैं, उसी तरह से कहीं ना कहीं युवाओं का एक कह सकते हैं भविष्य या उनकी जिंदगी भी खतरे की ओर जा रही है, खतरे की ओर बढ़ती जा रही है जब से ये नशे की आग फैलती जा रही है। तो बिल्कुल दोस्तों, सुबह जो है 6:30 बजे से रिज पर सभी इकट्ठे हुए आज के दिन और इस मैराथन में भाग लेने के लिए जो प्रतिभागी वहां पहुंचे हैं, तो उन्हें एक तरह से वेस्ट विशेष भी कह सकते हैं क्योंकि समय तो खैर शुरू भी हो चुकी है। और ऐसे में हम जितने भी एफर्ट्स अपनी तरफ से कर सकें उतने हमें करने चाहिए, क्योंकि नशा जो है ना दोस्तों, जितना हम इसकी गहराई को जानेंगे उतना ही इसे हम जड़ से मिटाने का प्रयास कर पाएंगे। लेकिन ये तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम सिर्फ और सिर्फ हर एक सेलिब्रेशन हो, हर एक जो भी हम दिन सेलिब्रेट करते हैं वो सिर्फ उसी दिन तक अगर सीमित रह जाएं। क्योंकि जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं उस दिन तो हम बहुत उत्साह में एनर्जी के साथ कर लेते हैं, लेकिन अगले ही दिन मैंने कहा ना, वो एनर्जी फीकी सी हो जाती है, ढीली सी हो जाती है, फिर पता नहीं वो बातों में या यादों में ही रह जाती है। तो क्या उसे यादों में ही रहने देना है या असल जिंदगी में लेकर आना है? अगर आप अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, उसे प्यारा बनाना चाहते हैं, तो हर एक चीज की अहमियत को समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो अपनी वैल्यू, अपने आसपास के माहौल की वैल्यू, अपने वातावरण की वैल्यू, अपनी प्रकृति की वैल्यू, तो ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, कहीं ना कहीं हाथ हमारा ही रहता है, कोई बाहर से नहीं आता इन सारी चीजों को ठेस पहुंचाने, हम खुद इन्हें ठेस पहुंचाते हैं और फिर नुकसान भी खुद का ही करते हैं। तो बिल्कुल इस पे सोचिए, और अगर कहीं आपसे जाने अनजाने में ये गलतियां हो रही हैं या अगर आप इसमें कोई अपना योगदान दे सकते हैं, वो चाहे नशे से युवाओं की जिंदगी, बच्चों की जिंदगी को बचाना है या फिर पर्यावरण को जो ठेस पहुंचा रहे हैं उनसे लड़ना है, उनसे जो है एक दिमागी शतरंज खेलनी है, तो जरूर सोचना तो पड़ेगा। तो बिल्कुल सोचने के लिए भी तो समय चाहिए, तो समय मिलता है ना। बिल्कुल दोस्तों, इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के साथ आप सोचिए विचारिए और उसके बाद फिर से और सवालों के साथ आप सभी के साथ ढेर सारी बातों के साथ जुड़ना है। तो बिल्कुल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से।

दोस्तों, इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और आज का दिन बहुत ही खास है, बहुत ही अहमियत से भरा हुआ है। लेकिन जब तक इस अहमियत को हम समझेंगे नहीं, तब तक हमारे लिए ये सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशंस तक ही सीमित रह जाएगा। लेकिन आज के दिन को अगर हमने थोड़ा सा भी ऐसे कहते हैं ना कि नज़रअंदाजगी में या फिर ऐसे ढील में लिया, तो शायद हमारी ज़िंदगी आने वाले समय में कहीं ढील में ना चली जाए, नज़रअंदाजगी में ना चली जाए, कहीं प्रकृति हमसे मुंह ना फेर ले। बस वो दिन ना आए, उस दिन का वेट मत कीजिए। और अभी भी समय है अपने आप को सुधारने का, अपनी हरकतों को सुधारने का। तो दोस्तों, बिल्कुल आप सभी सोच ही रहे हैं, इस पे विचार कर रहे हैं कि आखिर कहीं आपने कोई गलतियां, क्योंकि गलतियों से तो इंसान सीखता है दोस्तों, गलतियां इंसानों से ही होती हैं, लेकिन गलतियां करके उन्हें ना पहचानना, ये फिर बहुत बड़ी गलत बात है। और हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो दोस्तों, पर्यावरण केवल पेड़ पौधे, नदियां और पहाड़ ही नहीं है, बल्कि वो संपूर्ण प्राकृतिक व्यवस्था है जो हमें जीवन प्रदान करती है। स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और उपजाऊ भूमि हमारे अस्तित्व की आधारशिला है। जिस भूमि को सेल करके कुछ परिवार अपना गुजारा कर रहे हैं या उसी के सहारे हैं, उसी की हम कद्र नहीं कर रहे, तो सोचिए वो भूमि हमारी कद्र किस तरह से करेगी। आज दुनिया कई पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन। इन समस्याओं का प्रभाव मानव स्वास्थ्य, जैव विविधता और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर पड़ रहा है। तो हमारा क्या कहना होता है, अक्सर हम बात करें तो बोलते हैं कि अब तो हमारा समय गुजर चुका है, अब तो जो आने वाली पीढ़ियां हैं या जो ये बच्चे हैं यही संभालेंगे सारा कुछ, हमारा तो क्यों कोई दायित्व नहीं है। क्यों नहीं है? जब तक आप इस दुनिया में हैं, जब तक आप इस जिंदगी में हैं, तब तक दायित्व ही दायित्व है। क्योंकि प्रकृति इस, कहते हैं ना दोस्तों, पर्यावरण की इस साफ से माहौल में आप सांस तो ले रहे हैं ना, जब तक सांसें हैं तब तक तो जीवन है। तो ये प्रकृति आपको कितना कुछ दे रही है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि उसने ये सोच लिया कि आप बुजुर्ग हो गए हैं तो आपको कुछ ना दिया जाए और अब बड़ों की, मतलब बच्चों का दायित्व है तो उन्हें ही दी जाए, ऐसा तो वो नहीं करती। वो तो इक्वली सभी को अपनी देन दे रही है, फिर हम ये क्यों सोच लेते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों, जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हम बात की अभी, तो एक बहुत ही खास जानकारी आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी इसी से जुड़ी, कि जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के सामने सबसे गंभीर संकट बनकर उभरा है। और हिमालय राज्य हिमाचल प्रदेश भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं है। प्रकृति और विकास के बीच संतुलन स्थापित किए बिना आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ जैसी घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदाओं ने प्रदेश में बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान पहुंचाया। विशेषज्ञों के अनुसार अगर हम देखें तो ये बदलते जलवायु चक्र और बढ़ते पर्यावरणीय दबाव का परिणाम है। जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग, वनों की कटाई, अनियोजित शहरीकरण और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ी है। इसका असर अब मौसम के बदलते स्वरूप के रूप में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अनियमित वर्षा, सूखा, जंगलों में आग और बढ़ता तापमान भविष्य के लिए एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। तो क्या आप अपने आने वाली पीढ़ियों को ये सारी मुश्किलें देकर जाना चाहते हैं या उन्हें एक सुरक्षित जीवन देना चाहते हैं? यह आपके हाथों में है और आपकी सोच पे निर्भर करता है। तो जरूर इस गंभीर से बात पे विचार और नजर जरूर दौड़ाइए।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये पहाड़ी गीत आप सभी ने एंजॉय किया है और उम्मीद है आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। क्यों नहीं आया होगा दोस्तों, कांगड़ा का गीत है और कांगड़ा के हम लोग हैं तो क्यों पसंद नहीं आएगा, ऐसी भी कोई बात है? बिल्कुल भी नहीं जी दोस्तों। लेकिन मेन जो मोटिव है वो क्या है कि इस प्यारे से जीने को प्यारा कैसे बनाना है या प्यारा कैसे रखना है। जिस तरह से आज तक हम इस प्यार भरे माहौल में जीते आ रहे हैं उसे कैसे बरकरार रखना है, या ये जो प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं इन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उस पे काम करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन समय रहते तो फिलहाल तो समय है दोस्तों एक छोटे से अंतराल का, और ये समय कभी कोई दूसरा इंसान नहीं लेकर आएगा। जिस दिन आपने सोच लिया कि नहीं मुझे अपनी सोच बदलनी है, बाकी दुनिया क्या सोचती है क्या नहीं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, तो सोच लीजिए कि उसी दिन से बदलाव आ गया। लेकिन हर एक इंसान को अपने अंदर ये सोच लाना बेहद ज़रूरी है। कोई मैं ये नहीं कह सकती कि मैं आपको बोलूं कि नहीं आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, या आप मुझे बोलें कि नहीं ऐसा होना चाहिए वैसा वैसा, बिल्कुल भी नहीं। प्रेशर में आके या फिर दिखावे के लिए हम एक दिन के लिए कुछ कर सकते हैं, 2 दिन के लिए कर सकते हैं, 3 दिन के लिए कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ 1-2 दिन की मोहताज नहीं है। उसके लिए तो हमें हर दिन अपनी ज़िंदगी में कुछ खास पल बनाने होंगे, कुछ खास एफर्ट्स करने होंगे, उसी से हम हर एक पल को प्यारा बना सकते हैं और इस प्रकृति को भी बचा सकते हैं। तो आइए दोस्तों एक छोटे से अंतराल के बाद फिर से आप सभी जुड़ेंगे रुचिका के ढेर सारी बातों के साथ।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ। यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

आज एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, जिसके साथ आप सभी शुरुआत कर रहे हैं या यूं कहें कि एंजॉय कर रहे हैं अपनी डेली रूटीन दिन की शुरुआत के साथ, गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम के साथ, बहुत ही प्यारे से सफर के साथ। तो आइए इस सफर को और आगे की ओर लेकर चलते हैं, क्योंकि जिंदगी का नाम बस चलते रहना है, रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है। जो रुक गया फिर उसकी जिंदगी कहीं ना कहीं रुक गई। तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी जिंदगी रुक जाए या फिर बस एक ही रफ्तार में चलती रहे, उतार चढ़ाव को पार करते करते एक मंजिल तक पहुंच जाए। मंजिल तक पहुंचना है ना, तो उसके लिए मेहनत तो करनी होगी। किस सोच में पड़ गए, मेहनत सबसे बड़ा फल है हमारी जिंदगी का। तो आइए दोस्तों, जिंदगी से जुड़ी बातें ही हमें प्रेरणा भी देती हैं, हमें जीना भी सिखाती हैं। दोस्तों संसार वैसा नहीं है जैसा वो है, बल्कि वैसा दिखाई देता है जैसा हमारी चेतना है। यदि मन क्रोध भय ईर्ष्या और दुख से भरा है तो पूरी दुनिया हमें वैसी ही प्रतीत होगी, लेकिन जब भीतर प्रेम शांति और जागरूकता का दीपक चलता है तो वही दुनिया सुंदर और अर्थपूर्ण लगने लगती है। दुनिया को बदलने की कोशिश में मनुष्य अपना पूरा जीवन लगा देता है, पर खुद को बदलने का साहस वो अक्सर नहीं कर पाता। परिवर्तन की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है। जब दृष्टि बदलती है तब दृश्य भी बदल जाता है। यदि आप शांति चाहते हैं तो पहले अपने भीतर शांति पैदा कीजिए। यदि प्रेम चाहते हैं तो पहले स्वयं प्रेममय बनिए। संसार आपके मन का दर्पण है, जो भीतर है वही बाहर प्रतिबिंबित होता है। खुद को बदलिए, क्योंकि आपके पास बदलने के लिए केवल आप स्वयं हैं। जब आप बदलते हो तो आपका पूरा संसार भी बदल जाता है। दूसरों को नहीं स्वयं को जानिए और रूपांतरित कीजिए। जब भीतर प्रकाश होता है तब जीवन का हर क्षण उत्सव से भर जाता है या उत्सव बन जाता है। यही है हमारे जीवन का सच।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अपनी बातचीत के साथ जो है जानकारियों का सिलसिला भी जारी रखते हैं। तो आइए जानते हैं एक और खास जानकारी। दोस्तों हरित पंचायत पहल अब राज्य भर के अनाथों और विधवाओं के कल्याण एवं उत्थान में भी योगदान देगी। ये नया कदम न केवल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को भी सहयोग प्रदान करेगा जिससे समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित होगा। और इस पहल के सामाजिक कल्याण पक्ष को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने योजना के तहत राजस्व वितरण मॉडल में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य की 100 ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाट क्षमता की भूमि आधारित सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। संशोधित राजस्व वितरण व्यवस्था के अनुसार इन परियोजनाओं से प्राप्त आय का 20% राज्य सरकार को दिया जाएगा। 20% परियोजनाओं के संचालन एवं रखरखाव के लिए हिमऊर्जा को आवंटित किया जाएगा। 10% हिमऊर्जा को मिलेगा। 25% संबंधित ग्राम पंचायत को विकास कार्यों के लिए प्रदान किया जाएगा तथा शेष 25% सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। जी दोस्तों जिससे कि संबंधित ग्राम पंचायत के अनाथों और विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना है जिसके तहत अनाथ बच्चों की शिक्षा देखभाल और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सहायता प्रदान की जाती है। तो ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाई गई है दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से और आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी डेली रूटीन के साथ एंजॉय कर रहे हैं इस प्यारे से सफर को। तो आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

तो सो इस प्यारे से गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अब फिर से एक और जानकारी की ओर आप सभी को लेकर चलते हैं। आइए जानते हैं एक और खास जानकारी। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में

समिति ने तैयारी शुरू कर दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के नियमन के लिए तैयार किए गए मॉडल प्लान को मंत्रिमंडलीय उप समिति ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इस मॉडल प्लान को अंतिम मंजूरी के लिए आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। जी दोस्तों, तो ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। तो आइए इसी के साथ एक प्यारा सा मस्ती भरा गीत हो जाए तो क्या बात है, क्योंकि हर टच हमने अपने प्रोग्राम को दिया है कुछ प्रकृति से रिलेटेड, या कुछ यूं कहें कि सुकून से भरे प्यारे प्यारे से गीत आप सभी तक पहुंचाए हैं। और थोड़ा सा मस्ती अगर हो जाए तो थोड़ा सा माइंड भी चेंज हो जाता है और एक सुकून जो है वो भी बढ़ जाता है। तो बिल्कुल इंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों धरती नदियाँ तालाब ये प्यारे सबके सब है दोस्त हमारे, इन सबको संरक्षित रखना सबको है सुरक्षित रखना, यही है अब कर्तव्य हमारा, पेड़ बचाएं जीवन सारा। जी दोस्तों, तो एक बार ज्यादा ज्यादा फिर से आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरह से आज का दिन आप सभी इस एनर्जी और खास उत्साह के साथ मना रहे हैं, उसी तरह से हर दिन को मनाइए, हर दिन की शुरुआत इस प्यारी सी हरियाली के साथ हो, तो इसके लिए आप अपना योगदान जो है वो ज़रूर दें। जी दोस्तों, आज का ये बहुत ही प्यारा सा सफ़र गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम का आप सभी ने इंजॉय किया अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, और उम्मीद है कि आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा और आप सभी ने ज़रूर इंजॉय किया होगा। तो अब समय है आप सभी से अलविदा लेने का, दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक अलग बातचीत के साथ, अलग जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ। यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, समय उसे भी वही पीड़ा देकर 100-100 बार रुलाता है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में लौट आया तो क्या होगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी ये ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
5: मैंने तो गलती कर दी तुमसे शादी करके।
6: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर दी मैंने। पता भी कितने दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
5: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वाले को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, समय उसे भी वही पीड़ा देकर 100-100 बार रुलाता है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में लौट आया तो क्या होगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
5: मैंने तो गलती कर दी तुमसे शादी करके।
6: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर दी मैंने। पता भी कितने दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
5: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वाले को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।
7: Oh, shit!

0: 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं रूमा गुलेरिया जी। तो रूमा जी, ये हमारा कार्यक्रम होता है मेरे हौसलों की उड़ान, और इस कार्यक्रम को आप बहुत अच्छे से मैनेज करती चली आ रही हैं कब से, या मैं देख रही हूँ आपको रुचिका के साथ। और आज का जो हमारा विशेष टॉपिक है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, वो है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट।
1: बिल्कुल, सबसे पहले तो ज्योति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी तरह से मुझे इंट्रोड्यूस किया है फिर से दोस्तों के सामने। और देखो, बड़ा अच्छा लगता है हमारे हौसलों को जब उड़ान मिलती है, और हमारा मेन मकसद यही है इस कार्यक्रम का कि हम बहुत अधिक से अधिक जानकारी अपने दोस्तों तक पहुंचा
0: पाए,
1: ताकि किसी भी प्रकार की अगर हमारे जीवन में कोई दिक्कत आती है, कानूनी पेचीदगी आती है, तो उसके साथ वो किस तरह से निपट सकते हैं।
0: वैसे सिर्फ कानूनी बातें ही नहीं करती हैं आप इस कार्यक्रम में, मैंने और भी बहुत सारे विषय सुने हैं, कभी माँ की भूमिका में भी रहती हैं और बहुत सारी चीजें। चलिए, हम इस विषय पर आज बात करने वाले हैं, तो इस पे आगे बढ़ते हैं।
1: जी, आपने बात करी कि आज हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के बारे में। तो सबसे पहले तो ज्योति जी, मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है इस विषय में लोगों तक जानकारी पहुंचना, क्योंकि आजकल के समय की अगर हम बात करें तो हमारा जो यंग जनरेशन है, या बहुत सारी ऐसी कई समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती हैं, हम लोग फ्रस्ट्रेशन में आकर, जब हमने कभी देखा होगा घर में भी, अगर हम या हमारे बच्चे कभी गुस्सा आता है तो हम तोड़ फोड़ करते हैं, चीजें इधर उधर पटकते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: ऐसा हर आम जिंदगी में भी होता है ये, लेकिन जब बात आती है पब्लिक प्रॉपर्टी की, तो वहां पर हमें थोड़ा सा सतर्क होने की आवश्यकता हो जाती है।
0: तो वहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट जो ये है, इसका पूरा नाम क्या है और ये लागू कब हुआ था, सबसे पहले हम यही बात करते हैं।
1: बिल्कुल, पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 में ये अधिनियम जो था वो उपयोग में आया था, लागू हुआ था, और ये हुआ था सारे ही भारतवर्ष में इसको लागू किया गया था उस दौरान, एक्सेप्ट जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि वहां के हालात आप जानती हैं कुछ और थे, लेकिन आज के जो हालात हैं वहां पे जम्मू कश्मीर में भी ये एक्ट वैसे ही प्रभावी तरीके से लागू है जैसे बाकी भारतवर्ष में है। और इसका पूरा नाम आपने पहले ही बता दिया था, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984, या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेजेस एक्ट।
0: जी,
1: और मैं यहाँ ये भी जिक्र करना चाहूंगी ज्योति जी की, पब्लिक प्रॉपर्टी में वो सारी संपत्तियां आ जाती हैं जिनका हर व्यक्ति इस्तेमाल करता है बिना रोक टोक के, जैसे सड़कें हैं, गाड़ियां हैं, ट्रेन्स हैं, और भी सरकार द्वारा विश्वविद्यालय बनाए हैं, स्कूल बने हैं, अस्पताल हैं, ये इस तरह की जो भी संपत्तियां हैं जिनको आम पब्लिक इस्तेमाल करती है बिना किसी भी रोक टोक के, वो सारी पब्लिक प्रॉपर्टी आती है। तो इन संपत्तियों को अगर हम नुकसान पहुंचाते हैं तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान देश का या किसी और का नहीं होता है, आम आदमी का भी इसमें नुकसान होता है।
0: तो दोस्तों, जैसे कि रूमा जी ने हमें बता दिया है कि कोई भी ऐसी संपत्ति जैसे कि सरकारी इमारतें, बसें, ट्रेनें, पानी बिजली के साधन या कारखाने, जो कि सरकार, स्थानीय प्रशासन जैसे नगर निगम या किसी भी सरकारी संपत्ति के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, उसे पब्लिक प्रॉपर्टी कहा जाता है, आंका जाता है, और उसका बचाव करना, उसकी संभाल करना,
1: बिल्कुल हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दिल से निभानी चाहिए। आपने देखा होगा सार्वजनिक संपत्ति जो भी है, कई बार विरोध प्रदर्शन के दौरान या दंगे हो जाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला होता है, तो ज्यादा क्या होता है, हम लोग उसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं,
0: क्योंकि हमारे हाथ में और कुछ नहीं होता ना, हम अपने घर की चीजें तोड़फोड़ नहीं करेंगे, जाकर के वहां जाएंगे। और एक बात रूमा ये भी है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो युवा होते हैं ना हमारे, ये अपने दिमाग से उस वक्त काम नहीं लेते, जो पीछे से फीडबैक दिया जाता है ना कि ऐसे करो, वहां पे चले जाओ, और वो चीज सामने नहीं आती है, वो पीछे ही रह जाती है, लेकिन सामने वो आ जाते हैं जो कि इस दंगों फसादों में।
1: बिल्कुल, और एक चीज आपने जैसे बोला ना, युवा ही ऐसा ज्यादा जोश में होते हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण जो है बेरोजगारी भी है।
0: हाँ।
1: और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो ऐसे लोगों को उकसाते हैं कि ये सब सरकार की वजह से हो रहा है और सरकार हमें ये नहीं दे रही है, ये सुविधा नहीं मिल रही है। जैसे आपने पीछे देखा होगा पंजाब में कई प्रकार के दंगे भड़काए गए, भड़के भी हैं। हम ज्यादा बात उस तरह की नहीं करेंगे क्योंकि मुझे लगता है हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो लोगों को अवेयर करना है कि अगर हम किसी प्रकार की ऐसी कोई अगर बात करते हैं तो उससे हमें क्या नुकसान होता है और हम किस तरह से इन चीजों से बच सकते हैं। और मुझे लगता है युवाओं को सही रास्ते पे लाने के लिए उनको अलग अलग एक्टिविटीज से जोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है और जरूरी नहीं है कि सरकार ही इसके लिए एफर्ट करे। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं वो काम कर रही हैं, स्वयं सहायता समूह है काम कर रहे हैं, यूथ क्लब हैं जहाँ पे इन क्लब्स के साथ जुड़कर यूथ जो है अपने भविष्य को देखते हुए अच्छे निर्णय ले सकते हैं। उनको सोच समझ होनी चाहिए कि अगर हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो नुकसान हमारा अपना है। और ज्योति जी मुझे लग रहा है कि बातें ज्यादा हो रही हैं और
0: मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं के बारे में बात हुई है तो हम युवा से संबंधित कोई गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल, और ऐसा ही एक थोड़ा सा गीत अगर हम अपने दोस्तों को सुनाएं तो मुझे लग रहा है कि ये जो गंभीरता हमारे विषय की है वो थोड़ी सी हल्कापन उसमें आ जाएगा।
0: हम भी हल्कापन ही चाहते हैं, ज्यादा गंभीर होना नहीं चाहते।
2: कहता हूँ कभी मैं हूर हूर कहता हूँ, कभी उसे नूर नूर कहता हूँ, कभी

0: रुमा जी, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से हम आ गए हैं बातचीत करने के लिए दोस्तों के साथ। अब आप ये बताएं हमें, ये जो पब्लिक हमारी प्रॉपर्टी है, इसको जब कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो हम आम पब्लिक की भागीदारी क्या रहती है?
1: देखिए, पब्लिक प्रॉपर्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस एक तरह से हम सब उस संपत्ति के अधिकारी हैं, उसके मालिक हैं। तो एक मालिक होने के नाते जो भी संपत्ति होती है उसका हम जैसे घर में बचाव करने की कोशिश करते हैं। हमारे घर में अगर कोई बाहर से आ जाता है, कोई भी दंगा फसाद करता है, तो हमारी पहली कोशिश होती है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को सेफ रखें, खुद को सेफ रखें और हमें कोई नुकसान ना हो। तो सबसे पहले तो आम नागरिकों की, सभी की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि जहां कहीं भी इस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अगर हम भी उस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं या उन दंगों में हमें डर लग रहा है, हमें अंदेशा है कि यहाँ पे कोई दंगा भड़क सकता है, नुकसान हो सकता है, तो जो भी उस ग्रुप में, जो भी वहां पे हैं, जो भी समझदार व्यक्ति हैं, उनको समझाएं कि हमारा जो प्रदर्शन है किसी भी चीज के लिए है, जिस भी चीज के लिए हम लड़ रहे हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, वहां पे हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। और ज्यादातर आपने देखा होगा ज्योति जी, हम जब भी किसी दंगे की बात होती है या जब भी कोई नुकसान बड़ा हो जाता है तो आम पब्लिक जो है वो बहुत परेशान होती है इन चीजों से।
0: हाँ बिल्कुल।
1: और हम जब डिस्कशन करते हैं आपस में तो ये कहते हैं कि जिस संपत्ति को हमने नुकसान पहुंचाया है उसके लिए टैक्स हमने भरा है,
0: हम ही भरते,
1: हमारी
0: हैं।
1: ही जेब का पैसा लगा है और हमारी ही हाथों से उसको नुकसान हो रहा है। तो जब भी हम किसी भी इस तरह की गतिविधि में शामिल हो या हमें लगे कि ऐसी गतिविधि हो सकती है, तो जब सबसे पहले हमें अपने आस पड़ोस को, खुद को इस बात के लिए अवेयर रखना है कि कुछ भी हो जाए हमने संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि थोड़ा सा नुकसान भी हमारे कंट्री को, हमारे स्टेट को, जहां भी हम रह रहे हैं उस जगह को कितना पीछे ले जाता है उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। और इसका खामियाजा हम सभी भोगते हैं।
0: खामियाजा तो हम भुगतते हैं, लेकिन रुमा होता पता क्या है कि जब हम किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहां पर ये सब हो रहा होता है, हम ना चाहते हुए भी उस भीड़ का अगर हम हिस्सा बन जाते हैं तो हम वहां पर एट ए टाइम उस वक्त किसी को नहीं समझा पाते हैं कि भाई आप ऐसा मत करो, क्योंकि हमें अपनी भी, अपना भी देखना होता है। तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम उसमें इन्वॉल्व ना हो, हम पीछे रहें।
1: बिल्कुल, यही हमारी भागीदारी इसमें सुनिश्चित हमें करनी चाहिए कि जहां तक हो सके हम अवेयर कर सकते हैं जनता को, औरों को अवेयर करने से पहले तो हमें खुद को अवेयर करना है, हमारे हाथों किसी को कोई नुकसान ना होना चाहिए। आप देखिए, ये बहुत ही गंभीर समस्या है कि, और मुझे समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों होता है। जब भी हम किसी चीज की डिमांड सरकार से करते हैं तो हम अपनी बात शांत तरीके से, अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो और कोई विकल्प ना ढूंढते हुए हम तोड़फोड़ पे आ जाते हैं, आगजनी पे आ जाते हैं, और इस तरह के कई आपने हादसे देखे होंगे। अभी पीछे हमारे यहाँ हिमाचल में एक बहुत बदलाव आए हैं, बहुत तरक्कियां भी हुई हैं, वंदे भारत ट्रेन आती है, तो आपने सुना होगा कि पीछे उस पर भी लोगों ने पत्थरबाजी करी, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पे ये है कि जब हम इस तरह की हरकतें करते हैं तो क्या इन चीजों से हमारी समस्या सॉल्व हो जाती है? तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि अगर हम, हमारा विकास हो रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, आज हमारे स्टेट में ट्रेन चल रही है, बसें चल रही हैं, और भी काफी सारे बदलाव आए हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, एजुकेशन के हब जो है अब हिमाचल भी हो गया है, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो है वो बने हैं, और अगर देखो और इनका सारी चीजों की जो यूटिलाइजेशन है वो हम करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे, अगर हम ही इनको नुकसान पहुंचाएंगे, ये नुकसान बहुत, इसकी भरपाई जो होती है वो बहुत मुश्किल होती है।
0: इसकी भरपाई के लिए हमें और ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा
1: और
0: है।
1: ये जो महंगाई जो बढ़ती है ना, मुझे लगता है कि इसके पीछे भी इस तरह की बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो शामिल होती हैं।
0: रुमा, एक और गीत का वक्त हो गया है कार्यक्रम में।

0: ज्योति जी, बहुत ही प्यारा गीत सुनाया आपने और मजा आ गया गीत सुन के। तो मुझे लगता है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए इस कार्यक्रम में।
1: यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को सामान्य रूप से नुकसान पहुंचाता है तो उसको क्या सजा मिल सकती है? अब हम सजाओं के बारे में बात करेंगे।
0: बिल्कुल, देखिए हम लोग सोचते हैं कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा तो हम बच जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने देखा होगा अक्सर दंगे होते हैं, कहीं प्रदर्शन होते हैं, कहीं आगजनी या किसी भी प्रकार की कोई नुकसान हो जाता है तो वहां पे जो है पुलिस की एक ड्यूटी हो जाती है कि ऐसे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके खिलाफ केसेस बनाए जाते हैं, कई तरह के केसेस ऐसे रजिस्टर्ड भी होते हैं। इसमें जो कानून है, ये जो बनाया है पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेजेस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस एक्ट, इसके तहत सरकार ने जो है वो सजा के भी प्रावधान किए हैं। और यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला इस तरह के मामले में दर्ज हो जाता है तो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो उसको 3 साल से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है, और सजा के साथ साथ इसमें जुर्माना
1: भी हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं।
0: बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं जब भी कोई इस तरह का मैटर आता है तो हम बिजली काट देते हैं, पानी की पाइपें तोड़ देते हैं, पानी की सप्लाई रोक देते हैं, नुकसान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी जब बात नहीं मानी जाती है तो हमारा क्या होता है कि हम अगर पानी बंद कर देंगे किसी का, बिजली की आपूर्ति बंद कर देंगे तो जो लोग परेशान हो रहे हैं वो भी हमारे साथ आके शायद हमारे लिए बात करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जब हम इस तरह का नुकसान करते हैं, जैसे मानो पानी की पाइपें तोड़ दी, बिजली की तारें जला दी, कुछ भी कर दिया इस तरह का नुकसान, तो यहाँ पर भी 6 महीने तक की जो है वो कम से कम जेल हो सकती है। और अगर उस अपराध की गंभीरता अधिक है, नुकसान की जो जिसको बोल सकते हैं
1: ज्यादा कर दिया,
0: ज्यादा मात्रा में नुकसान हुआ है, तो ये सजा भी 5 साल तक बढ़ सकती है। बिल्कुल। और आपने देखा होगा कई बार कई जगहों पे ऐसे होता है कि हम विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो ऐसे में ये जो सजा है, जो कम से कम सजा है वो 1 साल है, और इसमें अधिक से अधिक जो सजा है वो 10 साल है। 10 साल तक की सजा हो सकती है और वहां पे भी वो कठोर जेल होती है, सश्रम कारावास जिसको बोलते हैं। तो साथ में इसमें नुकसान जो है, सॉरी, इसमें जो जुर्माना है वो भी 50,000 से लेके 2 लाख तक का आपको जो है जुर्माना सरकार को देना पड़ता।
1: रुमा, यहाँ से ना एक अलग विषय पर बात करूंगी, अलग तरफ चलती हूँ जरा, कि चलो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन कई लोग ना जिद्दबाजी में आकर के कि हमारी बात मान ले कोई, चाहे वो सरकार की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हो या किसी व्यक्तिगत मामले के लिए, कोई ट्रेन के छत पे चढ़ जाता है, कोई बस के ऊपर चढ़ जाता है, तो ऐसे में भी क्या सजा होती है?
0: बिल्कुल होता है। आप अपनी जान को अगर खतरे में डाल रहे हैं या आपकी वजह से किसी और की जान खतरे में आ रही है तब भी सजा का प्रावधान है। जैसे आपने बोला कि बस की छत के ऊपर चढ़ के, हमने देखा है कि अभी तो शायद कम हो गया है, पहले समय में बसेस बहुत कम होती थी तो बस की सीटों के छत के ऊपर सफर करते थे लोग, वो भी क्राइम है, और वहां पर भी 1 महीने से लेकर 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है जी।
1: अच्छा, यानी कि जब आप उतरेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, ये याद रखिएगा।
0: बिल्कुल। और लेकिन अब तो लोगों में काफी अवेयरनेस आ गई है और काफी हमारे पास संसाधन भी हैं, तो छतों पे अब मेरे को लगता नहीं कि यहाँ कोई सफर करता है
1: अभी भी। वैसे आजकल को कभी कभी कोई एका दुक्का वीडियोस देखने को मिल जाते हैं कि छत पर तो नहीं लेकिन कोई साइकिल से चला हुआ है ना, तो वो बस की पिछवाड़े को पकड़ देता है कोई डंडे वंडे को, अपने रास्ते पे सही जगह।
0: बिल्कुल। और देखो, अपनी जान को तो नुकसान में वो डाल ही रहा है, लेकिन अगर ऐसे करते हुए अगर वो कहीं उसका हाथ फिसल जाता है, छूट जाता है, बस के नीचे आ जाता है, तो आप देखिए कि सीधा का सीधा केस जो है वो बस चलाने वाले के ऊपर बनता है। तो यहाँ पर भी अगर पता चल जाता है कि गाड़ी चलाने वाले की या साइकिल वाले की गलती है तो उसके ऊपर केस दर्ज हो सकता है।
1: कई बार छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, स्कूल से घर को जा रहे होते हैं, वो भी बस में पीछे की तरफ लटक जाते हैं और पता नहीं होता कंडक्टर को।
0: बिल्कुल। और ये बिल्कुल गलत है, इसलिए तो इसके लिए तो मैं यही कहूंगी कि जो भी परिवहन चालक हैं उनको बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी बस के पीछे कोई लटका तो नहीं है या इस तरह का कोई गलत तरीके से बस को पीछा तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कर रहा है तो उनको खुद ही एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ।
1: गीत सुनने।
0: बिल्कुल ज्योति जी, अब हो गया है समय गीत सुनने का, तो सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: खूबसूरत से गीत के बाद रुमा जी, अब मैं आपसे और भी बहुत कुछ जानना चाहती हूँ इस विषय पर। ये मत समझिए आप श्रोताओं कि ये बहुत छोटा सा विषय है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मुझे भी ऐसा लगा था कि इसमें कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है अभी इसमें। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब दंगे होते हैं, लोग तो भाग जाते हैं, कोई मिलता नहीं, फिर उसके बाद ऑन द स्पॉट उस जगह पर, तो कैसे पता चलता है पुलिस को कि कौन कौन लोग वहां थे? कुछ कुछ तो वीडियोस भी बनाते होंगे खैर, और फिर उसके बाद आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? कोई लोग ऐसे भी होते होंगे बीच में से जो मुखबिर भी होते होंगे, कुछ बताते भी होंगे।
1: बिल्कुल।
0: और फिर सजा का प्रावधान कैसे रहता है?
1: सजा के उपबंधों के बारे में तो मैं आपको बता चुकी कि कैसे कौन से अपराध में कितने अपराध की गंभीरता है, उसी हिसाब से सजा जो है वो निर्धारित होती है। लेकिन आपने बात करी कि ये बात और बहुत सोचने वाली भी है कि जब दंगे हो रहे होते हैं तो वहाँ बल्क में भीड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, किसने नुकसान पहुंचाया पब्लिक प्रॉपर्टी को, किसने किया, किसकी जवाबदेही रहेगी, तो ये सच में सोचने वाली बात है। और आजकल का तो जो टाइम है वो सोशल मीडिया वाला है।
0: क्या केवल उसी को पकड़ लिया जाता है जो नेतागिरी कर रहा होता है उस वक्त?
1: बिल्कुल, जो नेता होता है जिसके कहने पर वो दंगा बुलाया, जो भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हुई है किसी भी प्रदर्शन के लिए, जिस भी ग्रुप ने समूह ने उनको बुलाया है, उनकी जो जवाबदेही होती है वो सबसे पहले होती है। सबसे पहले अगर कहीं पे भी नुकसान होता है तो आह्वान करने वाले व्यक्ति को या समूह को जो है वो पुलिस जो भी उनकी कार्रवाई होती है उसमें शामिल करती है। वहीं से पता लगाने की कोशिश की जाती है कि किस किस व्यक्ति द्वारा कहाँ कहाँ कितना नुकसान हुआ। और आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में आपने देखा है कि यहाँ कोई मर भी रहा हो तो हम उसको डॉक्टर के पास पहुँचाने की बजाय पहले वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो फुटेज से भी पता चल जाता है कि कौन सा व्यक्ति है जिसने फलां प्रॉपर्टी को फलां नुकसान पहुंचाया है। और इस तरह से जो है वो सबकी जवाबदेही बनती है। और उस भीड़ में जैसे मानो एक गांव से लोग गए हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो FIR होती है वो पूरे ग्रुप के ऊपर दर्ज हो जाती है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि पता होता है कौन कौन से लोग वहां पे गए हैं, तो उन सबकी जवाबदेही हो जाती है। वहां से पता चल जाता है कि किस व्यक्ति ने दंगे को अधिक भड़काया है, किसकी वजह से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है। तो इस तरह से बहुत सारे जो चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो है वो इन लोगों के खिलाफ FIR या एक्शन हो सकता है। और एक चीज और ज्योति जी, FIR की बात जब आती है तो जब दंगे हो रहे होते हैं ना, तो और ग्रुपिज्म जहाँ पे होता है तो आम पब्लिक डरती है इन चीजों से कि हम रिपोर्ट नहीं करेंगे चाहे उनके सामने कुछ भी नुकसान हो गया हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस को सूचना दे देता है किसी भी नुकसान के बारे में, तो उसकी जो जानकारी है वो गुप्त रखी जाती है, उसके बारे में नहीं बताया जाता। फोन के माध्यम से भी आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं, क्योंकि एक देखो जिम्मेदार नागरिक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, मेरे इलाके में कुछ हो रहा है और मुझे लग रहा है कि आज इस बिल्डिंग को ये दंगाई जो है वो जला देंगे या ये पुल तोड़ देंगे या फिर किसी स्कूल को नुकसान पहुंचाएंगे। देखो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम वहां पे इन्वॉल्व हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम पुलिस को इन्फॉर्म करें ताकि कोई बड़ा नुकसान।
0: पर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की ना कई बार आम नागरिकों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, शायद इस वजह से कोई खुल करके सामने आना नहीं चाहता।
1: लेकिन मैंने आपको बताया ना कि इस डर से बाहर हमें निकल जाना चाहिए। हम 100 नंबर पे पुलिस को सूचित कर सकते हैं या जो भी हमारा स्थानीय थाना है वहां पर हम गुप्त कॉल के माध्यम से अपने वहां पे हो रहे नुकसान के बारे में पुलिस को सूचित कर
0: लेकिन
1: सकते हैं।
0: लेकिन कई शातिर लोग होते हैं ना, उन्हें पता भी चल जाता है कि किसने ये इन्फॉर्मेशन दी है, तो होता क्या है कि वो कानून के तहत उनको अंदर ही रखने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, उनको बेल भी मिल जाती है।
1: बिल्कुल। लेकिन देखो आपने बेल के बारे में बात करी, तो इस तरह के जो अपराध होते हैं इनको गंभीर श्रेणी में रखा गया है, और जब भी कोई व्यक्ति इस तरह का अपराध करता है तो इसको आसानी से जो है वो बेल नहीं मिलती है जब तक कि वो साबित ना कर दे कि वो उस दंगे में शामिल नहीं था। और अगर वो उस दंगे में शामिल पाया जाता है, उसके विरुद्ध साक्ष्य मिलते हैं, तो फिर उसको बेल मिलना आसान नहीं होता है।
0: तो मुझे एक बात और जानना चाहूंगी मैं आपसे कि कई बार ना हमारी बॉलीवुड में भी बहुत सारी फिल्में बनती हैं, अलग अलग विषयों पर बनती हैं, और उनको देख करके कई बार तो मन में बड़ा जोश आ जाता है कि हाँ भाई हम भी अपने देश के लिए ये करेंगे वो करेंगे, और कई बार डर सा जाता है इंसान उल्टा कुछ लोग कि नहीं नहीं अगर हम ऐसा करेंगे और अगर हम कोई सूचना देते हैं कुछ करते हैं तो देखो ना, वो जो नायक होता है उसको ऐसा दिखाया जाता है कि उसको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, तो तो उससे भी कई लोग, या मैं यूं कहूं कि प्रेरणा लेते हैं, कई लोग डर जाते हैं।
1: देखो ज्योति जी, फिल्मों की अगर हम बात करें तो वो पहले ही बताया होता है कि सब कुछ काल्पनिक है, और जो फिल्मों में होता है वो हमारी रियलिटी में बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर हमारी जो जनता है या आम आदमी है वो ये सोच के राय बना लेता है कि फिल्मों में ऐसा हुआ था और हम ऐसा करेंगे तो ये हो सकता है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति पुलिस को सूचना देता है, उसकी आइडेंटिटी है, अगर वो चाहता है कि गुप्त रखी जाए तो वो पूरी तरह से गुप्त रहती है, और पुलिस को लगता है कि फलां व्यक्ति के बारे में अगर पता लग गया है, कि दंगाइयों को पता लग गया कि इसने सूचना दी है, तो उसकी जान माल को नुकसान है, तो सरकार उसको प्रोटेक्शन भी देती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फिल्मों को देख के अगर हम राय बना लेंगे और हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से कई तरह के नुकसान हो जाएंगे और इनडायरेक्ट हम खुद उस नुकसान के।
0: देखिए वैसे हमने तो डरना कभी सीखा नहीं है, पर हाँ कई लोग हैं जो लोग इस तरह से सोचते हैं, डर जाते हैं
1: जी।
0: चलिए रोमा जी, ये तो रही बात थोड़ी सी हंसी मजाक की भी हो गई
1: जी जी,
0: और कुछ नॉलेज भी मिल गया है लोगों को
1: जी।
0: अब ये बताएं कि ये जो नुकसान हो गया, ठीक है, अब दोबारा से वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी, बस अगर जल गई है तो एक और बस लानी पड़ेगी, ट्रेन टूट गई है उसको बनाना पड़ेगा, उसके शीशे वगैरह चेंज करने पड़ेंगे, तो ये जो नुकसान है उसकी भरपाई कैसे होती है?
1: जो भी दंगाई होते हैं, जो भी दंगों को भड़काते हैं, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, वो सभी व्यक्ति जो हैं वो इस नुकसान की भरपाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और सबसे पहले अब बात ये आती है कि पता कैसे चलेगा इसने नुकसान पहुंचाया। तो मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि जो भी व्यक्ति समूह का मुखिया है उसका, या जो भी ग्रुप वहां पे या नेता है वो वहां पे उन दंगाइयों को लेके आया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो भी नुकसान पब्लिक को हुआ है, पब्लिक प्रॉपर्टी को हुआ है, उसकी भरपाई वो अपनी जेब से करेंगे, और
0: चाहे उसने कुछ नुकसान किया है या नहीं किया है।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा।
1: क्योंकि देखो वो लेके तो वही आया है वहाँ पे पब्लिक को, और वहाँ पे जो भी उसने उसका भड़काऊ भाषण दिया या जो भी उसने बातें करी, जिसके मद्देनजर जो है वो पब्लिक भड़क गई और उन्होंने, आपने कहा बस जला दी। अब देखिए बस की तो कोई गलती नहीं थी उसमें ना, तो भड़काने वाले की तो जिम्मेदारी बन जाती है। तो वहाँ पे उसके साथ साथ वहाँ पे मैंने बताया आपको कि वीडियो रिकॉर्डिंग जो अगर कहीं वहां पे मिल जाती है, या उस एरिया में सीसीटीवी फुटेज है, तो जिस भी व्यक्ति की वहां पे पिक्चर सामने आ जाती है उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बन जाती है जिसने नुकसान पहुंचाया है, और उस नेता की कि वो उस नुकसान की भरपाई करे। और एक चीज और मैं इसमें आपको बताऊंगी कि जैसे मानो मैंने आपका कोई नुकसान कर दिया है और आपने उसकी भरपाई अब मेरे को ही करनी है, और मेरी जेब में पैसा नहीं है आपको देने के लिए, तो अगर मेरे नाम पे जितनी भी संपत्ति है वो सारी कुर्क हो जाती है, और सरकार जो है उस संपत्ति की कुर्की करके उस नुकसान की जो है भरपाई करती है।
0: रुमा, ये तो रही जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी बात, लेकिन ऐसे दंगों में ना कई बार प्राइवेट जो गाड़ियां खड़ी होती हैं, बाइक्स होती हैं और कारें होती हैं, उनको भी तो नुकसान पहुंचता है।
1: बिल्कुल, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी ग्रुप की या उसी समूह की होती है जो जहां पे दंगा भड़का रहा है, और उसके नुकसान के लिए जो अगर मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी वहां पे नुकसान हो गया है, तो उसकी भरपाई के लिए मैं सरकार के आगे एप्लीकेशन दे सकती हूं कि ये नुकसान हुआ और इसकी भरपाई की जाए या करवाई जाए।
0: जी, क्योंकि सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी की बात नहीं, साथ साथ में हम और भी बातें लेंगे ताकि लोगों को अच्छी तरह से जो है इसकी अवेयरनेस हो सके, जागरूकता बन सके।
1: बिल्कुल, देखो ज्योति जी, जब पब्लिक, जहाँ पे पब्लिक है वहाँ पे प्राइवेट पर्सनल व्यक्ति भी हैं, है ना, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज भी हैं, तो जब नुकसान पब्लिक प्रॉपर्टी को होता है तो वहाँ पे आम आदमी को भी तो नुकसान होता है, और उस आम आदमी के नुकसान की भरपाई भी उन्हीं को करनी पड़ती है जो वहाँ पे दंगा या प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए कितना गंभीर सा विषय हम लेके चले हैं, और थोड़ी थोड़ी देर बाद ज्योति जी के चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वो उसी हिसाब से चेंज हो रहे हैं, और अच्छा भी लग रहा है। कितना सीरियस होके सुन रही है मैं ज्योति जी, और हमारी, मुझे उम्मीद है कि हमारे दोस्त भी इतना ही सीरियस होके सुन रहे होंगे,
0: ध्यान दे रहे होंगे पूरा।
1: बिल्कुल, और ये चीज ध्यान देने वाली भी है। देखो हम तो बात कर रहे हैं, बड़े बड़े दंगों की बात कर ली हमने, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमने आम देखा है गाँव में लोग लड़ते हैं आपस में। तो मेरे घर के पास से सरकारी पानी की पाइप जा रही है और वो आपके घर तक आ रही है, मेरी और आपकी बनती नहीं है, अब मैंने आपको पानी नहीं जाने देना है तो मैं बीच में पाइप काट दूंगी, तो ये भी एक प्रॉपर्टी उसी का नुकसान है। हम छोटे नुकसान की बात करके चलें, अगर मैंने पाइप काट दी है और कहीं पे भी वो सीसीटीवी में या आपने रिकॉर्ड कर लिया है कि यही इसको नुकसान करता है, तो आईपीएच विभाग में जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं आप और उस पाइप का जो डैमेज है उसको भरने के लिए आईपीएच विभाग जो है वो मुझे फोर्स कर सकता है या मेरी जिम्मेदारी हो जाती है वहां की। मैंने पाइप तोड़ी है, चाहे गुस्से में तोड़ी, आपको दुख देने के लिए तोड़ी, आपको परेशान करने के लिए तोड़ी, लेकिन थी तो वो सरकारी विभाग की पाइप, तो मुझे वो ठीक करवा के देनी ही थी।
0: इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है आज के समय में कि आप अपने घर के आसपास में कैमरा लगवा लें या फिर दो चार जो लोग हैं घर हैं वो आपस में मिल करके एक ऐसी जगह पर फिट करवा लें ताकि वहां से बिल्कुल साफ साफ नजर आए कि कौन क्या कर रहा है।
1: बिल्कुल, पर ज्योति जी मैं तो अब यही कहूंगी कि सीसीटीवी कैमरा लगाने की बजाय अगर हम लोग हमारे दिलों में जो गांठें हमने बांध रखी हैं उनको खोल दें तो मुझे लगता है कि जो आपसी सद्भाव और प्रेम हमारे बीच होगा वो अपने आप ही हमारी छोटी छोटी जो उलझने हैं, छोटी छोटी शिकायतें हैं, वो खत्म होती जाएंगी। और देखिए इंसान है ही शिकायतों का पुलिंदा है, तो हम छोटी छोटी चीजों को बांध के रख लेते हैं, ये चीजें हमें छोड़नी होंगी। जब तक हम इन चीजों को नहीं छोड़ेंगे तब तक नुकसान हम अपना भी करेंगे और औरों का भी करेंगे।
0: बिल्कुल, जैसे कि रूमा और मैंने छोड़ दिया और देखो आज हम लोग बिल्कुल साथ साथ में बैठे हैं।
1: जी देखिए प्यार जो वहाँ पे है वहाँ पे सब कुछ संभव है, हर एक चीज जो है वो प्रेम भाव से ठीक हो जाती है और बहुत सारी चीजें जो उलझी हुई थी वो सुलझ भी जाती हैं। तो मेरा दोस्तों से यही अनुग्रह है आप लोगों से कि छोटी छोटी चीजों को अपने मन पे मत रखिए और ये देश हमारा अपना है और हम देश की बात ना भी करें तो जहाँ हम रहते हैं वो गाँव, वो घर, वो पड़ोस, वो सब हमारा अपना है और अगर हम मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहेंगे तो यही सद्भाव हम आगे फैलाते जाएंगे और पूरे देश में प्रेम भाव जो है वो फैलेगा और किसी को नुकसान नहीं होगा। और एक इसी बात पे मेरे को ना एक ज्योति जी गीत याद आ गया है, वो गीत मैं चाहूंगी कि आप हमारे दोस्तों को सुनाएं। देश प्रेमी फिल्म का गीत है मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो।
0: रुमा जी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ
1: जी,
0: मैंने देखा है आपको भी गुनगुनाते हुए गाते हुए कुछ कुछ छोटी छोटी रील्स में देखा है और मैं चाहती हूँ कि इस गीत की एक लाइन आप ही शुरू करें।
1: अरे मैं इतना अच्छा नहीं गाती हूँ, तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ यही गीत सुनना है मुझे, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। गुनगुनाऊंगी किसी अगली बार।
0: ठीक है जी।
2: नफरत

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान। और आज इस उड़ान में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया
1: और रूमा गुलेरिया।
0: हमेशा रूमा गुलेरिया तो होती ही है आपके साथ लेकिन आज मैं अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेकर के आ गई हूँ। मुझे लगा कि ये जो टॉपिक है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मुझे मेरा मन किया कि मैं इसके बारे में रूमा जी से क्वेश्चन करूँ। और रूमा जी तो हर कानूनी दांवपेच में माहिर ही हैं, वो बता ही देती हैं कि क्या कैसे होना चाहिए और क्या क्या एक्ट है और साथ में क्या क्या सजा का प्रावधान है, और साथ में वो सलाह भी देती हैं बहुत अच्छी।
1: देखिए, अब बात बताएंगे किसी को किसी भी कानून के बारे में तो सलाह देना हमारा फर्ज भी बनता है। और मैं तो यही कहूंगी सबसे कि सारी संपत्ति हमारी अपनी है, इसको संभालें, इसका रख रखाव करें अच्छे से, उचित प्रबंधन करें, और ताकि हम ही नहीं हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हमें ये कहें कि हमारे पुरखों ने हमें बहुत अच्छी विरासत दी है। जैसे हम कहते हैं हमारे पुरखों ने हमें बहुत अच्छी विरासत दी है, बहुत अच्छे संस्कार, बहुत अच्छा कल्चर जो हमारे सामने है। आज भी हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कहीं कहीं मनों में भेद हैं तो मैं तो यही कहूंगी मत भेद ना रखें किसी के साथ, और मन में भी भेद ना रखें। जो भी आपके मन में है वो खुल के कहें, खुल के बात करें, और अपनी इस संस्कृति को सुदृढ़ बनाने में जो भी आप सहयोग कर सकते हैं वो करें।
0: जी, आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए या बाहर कहीं पर निकलते हैं घर से बाहर और इस तरह की चीजें आपको दिखती हैं, टूटी फूटी सी इमारतें हो जहां पर आप जा रहे हैं या वहां पर कुछ लिखा विखा हो, याद रखिएगा अगर आप इमारतों पे कुछ लिखते हैं ना, वो उसमें भी सजा का प्रावधान है अगर आप लिखते हुए पाए गए वहां पर तो।
1: बिल्कुल। और देखो ज्योति जी, हम हिमाचल में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, हम लोग भी घूमने जाते हैं, और हम क्या करते हैं, कुछ खाने का ले लिया, कुछ भी कर लिया, हम इंजॉय करते हैं और वो कचरा वहीं पे फेंक देते हैं। तो ये भी हम

0: ही हमारे यहाँ पर ठंडक है और बारिश होती रहती है, असम में बारिश आजकल भी हो रही है, तो पेड़ों के तने पे वो अपने नाम लिखते हैं, खोद खोद के उसे खराब करते हैं।
1: बिल्कुल, वो नहीं होना चाहिए,
0: वो भी हमारी अपनी ही प्रॉपर्टी है।
1: बिल्कुल, और देखिए बोलते हैं हरियाली है जहाँ जीवन है वहाँ, और हम बहुत खुशनसीब समझते हैं खुद को कि हम हिमाचल में हैं। आज पूरा देश तप रहा है गर्मी से और हम आज भी यहाँ पे ठंडी ठंडी बुछारों का आनंद ले रहे हैं।
0: बिल्कुल हाँ।
1: और बहुत अच्छा सा प्रेजेंट सा मौसम है, लोग घूमने आ रहे हैं, तो घूमने आने वालों से भी आग्रह है कि जगह जगह गंदगी ना फैलाएं, अपने साथ छोटा सा एक लिफाफा रखें, जो भी आपके कचरा है उसको उसमें रखें। हम भी कहीं जाएं तो हम भी यही करेंगे, और मैं तो ऐसा करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम कहीं भी गंदगी डालते हैं तो हम अपने बारे में लोगों को, हम कितने फूहड़ हैं, कितना हमें क्या बोल सकते हैं, अनसिविलाइज्ड पीपल हैं हम, तो वो हमारा ही प्रदर्शन सामने जाता है। तो आप घूमिए, एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए इस मौसम का, और साथ ही साथ सफाई का भी ध्यान रखें।
0: और सिविक सेंस की बात आजकल हर रोज ही हो रही है, जो भी मोबाइल उठाओ तो आपके सामने सिविक सेंस के बारे में बहुत सारी रील्स हैं, वो आपको भरी पड़ी हुई मिलती है। तो ये जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है इसको बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, और ये भी आपके सिविक सेंस में ही आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ तो आपने सीखा होगा, समझा होगा, और आगे अपनी पीढ़ी को भी बताएंगे, आसपास के लोगों को भी समझाएंगे। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करते हैं। मुझे और ज्योति पठानिया
1: और रूमा गुलेरिया
0: को दीजिए अनुमति, जल्द मिलेंगे आपसे किसी और विषय के साथ
1: इसी कार्यक्रम में मेरे हौसलों की उड़ान।

0: ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
1: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। उद्योग संगठन SOCHM ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे।
2: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4-लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में BSF के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की हर सीमा की भौगोलिक और सुरक्षात्मक चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए सभी सीमाओं पर एक जैसी रणनीति के बजाय स्मार्ट मॉडल अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अनामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इससे झलकती है। नागालैंड सरकार ने राज्य में तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पान मसाला, सुगंधित और स्वादयुक्त चबाने योग्य उत्पादों के साथ साथ तंबाकू या निकोटीन युक्त किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ पर लागू होता है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक फिसल कर 74,274 पर, जबकि निफ्टी 43 अंक लुढ़क कर 23,374 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, समय उसे भी वही पीड़ा देकर 100-100 बार रुलाता है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में लौट आया तो क्या होगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को ये ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी ये ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
5: मैंने तो गलती कर दिया तुमसे शादी करके।
6: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर दी मैंने। पता भी कितने दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
5: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वालों को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।
7: Oh, shit!

दोस्तों मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.9 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, समय उसे भी वही पीड़ा देकर 100-100 बार रुलाता है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में लौट आया तो क्या होगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को ये ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी ये ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
5: मैंने तो गलती कर दी तुमसे शादी करके।
6: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर दी मैंने। पता भी कितनी दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
5: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वाले को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।
7: Oh, shit!

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तोहां सारें दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर होई हो कार्यक्रम लेके माटी दी महक। तां श्रोताओं कर दिन कार्यक्रम दा आगाज इस प्यारे दे गीते कने तोहां सारे ने बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गूंज अपने बंदी।

हाँ बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला से कने तुहां सारियां ट्यून कित्ते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चलिया है माटी दी महक। श्रोताओं सुनते ने एक और प्यारा दिया गीत।

91.2 MHz पर। तो हाँ सारे ट्यून कित्ते है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला। मैंने तो हाँ सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक। तो श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि कन्ने ता श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

प्रिया तोहा सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला तेने तोहा सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक आशो तो बढ़ते न कार्यक्रम चल गए तेने सुन देनी कोर प्यारा दिया।

आहां बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तोहां सारियां ट्यून कित्ते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चले है माटी दी महक श्रोताओं सुनते ने एक और प्यारा दिया गीत।

91.2 MHz पर। तो हाँ सारे ट्यून कितने है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हाँ सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक तो श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि कन्ने ता श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कन्ने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

सारें दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहां सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना दे न माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि कन्ने अशो तो बढ़ते न कार्यक्रम च अग्गे कने सुनदे ने इक और प्यारा दिया गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहा सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महक। कहा श्रोताओ अज कने कार्यक्रम च बस इतना ही। तो तोहा सारे ने बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गूंज अप

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ। यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, समय उसे भी वही पीड़ा देकर 100-100 बार रुलाता है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में लौट आया तो क्या होगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
5: मैंने तो गलती कर दी तुमसे शादी करके।
6: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर दी मैंने। पता भी कितने दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
5: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वाले को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, समय उसे भी वही पीड़ा देकर 100-100 बार रुलाता है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में लौट आया तो क्या होगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी ये ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
5: मैंने तो गलती कर दी तुमसे शादी करके।
6: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर दी मैंने। पता भी कितने दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
5: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वालियों को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।
7: Oh, shit!

91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला दो है सभी ट्यून कर रहा और आओ तुंदा अपना आरजे रेडियो जो के सचिन कपूर हाजिर हो चुका है तुंदे सभी रे रेडियो सेट मा तुंदे सभी रे ऐप मा क्या हालचाल न श्रोता तुंदे और क्या हालचाल न तुंदे अपने रे उम्मीद करनो सब ठीक ठाक बुने सब खुशल मंगल बुने ए जी आज कने कार्यक्रम रे आगाज कर देन और आज है कड़ी पूजन आज है बड़ोली पूजन बड़ोली कस योगी बातचीत कर ले कस विषय पर बातचीत कर ले सो सब चीज़ तुसु दसनी लेकिन इस गीता थों बाद

0: बहुत ही प्यारा दे गीत थू शोतो और अय्या बे तुसु ले चल देने बड़ोली स्मार्ट सिटी अंदर आज ही बिल्कुल स्मार्ट सिटी अंदर अस होगी आज बड़े ही स्मार्ट पर्सनैलिटी के ना सोसुस होगी बेखुरे ने और यारे बातचीत किया सो भी बड़ी प्यारी बड़ी मिठी है। लोक संस्कृति पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और शोतो इसी सो गया तुसु दसना चाहता की हिमाचल में जहने पहली बार कला उत्सव हुआ तो तारकेश भारद्वाज श्री टीम में किया और राकेश जी आपो किया सो अस वो रिप्रेजेंट करो थो तड़ी ते बड़ी मोटी गल असु सब भी वास्ते है की फर्स्ट टाइम किया सो कला उत्सव हुआ तो हिमाचल में और नेशनल लेवल रह किया सो कला उत्सव हुआ थो और फर्स्ट टाइम असु जो रिप्रेजेंट करो थो राकेश भारद्वाज और यारी टीम है। तो राकेश भारद्वाज जी तुंदा रेडी गुंजन मा बहुत बहुत स्वागत है हार्दिक अभिनंदन।
1: सचिन भाई सभी पहले तो तुंदा जेड़ा रेडियो गुंजन रहा श्रोता ने तिहारा बड़ा बड़ा धन्यवाद जेड़ा तुस बड़ा प्रोत्साहन दिखा दूजा रेडियो गुंजन रा धन्यवाद जी आज मुझे अपने विचार रखने वास्ते दुआ कर फिर तुंदा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुंदे दूर दृष्टि मुझे उठी पे के इस कला कने संस्कृति रे मामले में गल करने वास्ते मुझे तुसे चुनो।
0: राकेश जी तुंदा भी तहे दिल था धन्यवाद करूं। पहले तो फर्क दसा की अजकना और जहने तुहे काम शुरू करो थो तो दोकना और अजकना क्या क्या फर्क है।
1: सचिन भाई जहने से काम शुरू करो हो तहने आज जड़ी सुविधा कलाकार जो मुड़ कर दे ना जड़ी शोधकर्ता जो मुड़ कर दे सुविधा सो सुविधा नाम दे है दस टाइम मैं आज जिया तुसे आक क्लिक कर दे गूगल मा या सोशल मीडिया मा तो तुस वो संस्कृति के बारे में 3600 गल्ला इसमें मिल जाती ना जहने अस स्टार्टिंग में काम करना शुरू करू तो सोशल मीडिया ना हमदा हो ना गूगल हम ना गूगल हम तो तहने अस क्या कर दे कि बुढ़ा बुजुर्ग गल कर दे है तो तिया बुढ़ा बुजुर्ग अस वो जड़े अस वो गल दसने अस उस अपने मन में इमेजिन करने कि भाई इं हम होना फिर अस तो अपने जड़ा इंदा मतलब कोई स्टेज प्रोग्राम होना कोई कुछ होना तेती मैं असू सो सो करना मतलब इंदा जड़ा बुढ़ा बुजुर्ग सो तिया कहानी दसने कि इं दो कने फिर असू सो इमेजिन करना अपने दिमागा कने फिर तेतियो लेकर काम करना अजकल तक चल रहा कि भाई मोबाइल खोल दे मुंडे कने तेतियो क्लिक कर दे कने वीडियो तेतिया हो जाना कने सो वीडियो एज इट इज कॉपी कर लेना कने तेती मैं क्या कि भाई यार कॉपी करना जरा जरा करे भी अगर तिया मुश्किल हुए या जरा करे तिया अपना कुछ तेती मैं ऐड करीता मतलब नए जमाने रा
0: प्रोत्साहन
1: करने जेड़ा मार्गदर्शन हुंदा ना सो मुझे इं लगता घरा हो मुड़दा जेड़ा तुंदे घरा रे जेड़ा मतलब एनवायरमेंट हुंदा जेड़े उठना बैठना तुसो जेड़ा मावड़े हो गाइडेंस मिलदे सो ही सभी पहले मतलब जेडे तुस वो राह दस दिया ना दस दी सांग आंदा अबे जी आसे गादे मनो ठीक है अबे इंदे करे तो सो साल जे तुसु पता कि भाई बैम हुने ता जनानी लुआचड़ी ला लेनी ठीक है बबरू पका लेना पोली पका लेनी ठीक है तो तुसु दस और दा कि भाई मरने मा भी अपनी संस्कृति दस दे ते तेठिया हो जेड़ा इंदा एनवायरमेंट हुंदा ना तेठिया हो ये सो मतलब सो मुड़ आंदे आ हेल्प बल्ले सकदा कि भाई एरा ए इंदे संस्कृति कने असु एती उठे काम करना
0: काम करना जी बिल्कुल। तरिंकू जी आइए अब ये भी जाने लेंदे ने पर शो तो पहले गीत हो लेंदे ने राकेश भारद्वाज जी फरमाइश में तथों बाद जान ले और भी राकेश जी क्या पसंदीदा गीत रही रतुंदा
1: ता सचिन भाई आजकल तो सभी रिजवानी है सो ही गाना चल रहा इस पिंडे दा लंबर ने आरब की लड़ी ने रहना
0: जी दो ही बोल जरूर
1: ओ इस पिंडे दा लंबर ने आराब की लणी ने रहना नहीं हो ओ इस पिंडे दा लंबर ने आराब की लणी ने रहना नहीं हो।
0: क्या बात है आयुष तो इस प्यारे दे गीता जो हुन लेंदे ने तत्थों बाद इंदे ने राकेश भारद्वाज श्री किनारी

0: 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है अपनी गप्पा और अपनी गप्पा अंदर राजस्व होगी राकेश भारद्वाज ना यारी स्टोरी बड़ी दिलचस्प है यारी जिंदगी री कहानी बड़ी दिलचस्प है लेकिन फिलहाल है काम करू कर देना आज कल्चर पर अय्या राकेश जी सभी पहले तो ये दसा की तुसु लेकिन दिलचस्प भी हुए की मु भी इस क्षेत्र में किया सो गाना हा एक तो यह दसी था की घर थो किया सो स्टार्ट बुंदा इंदा इनवायरमेंट तड़ी थो असु पॉजिटिव एनर्जी मिलती तड़ी थो है जो सीखना चाहते हैं सिंगर बुआ डांसर बुआ है ना या म्यूजिशियंस बुआ तड़ी थो है सीखते रहते चीजा तुंदी स्कूल कड़ी बुआ कॉलेज कड़ी बुआ और इस बीच रुचि जिन्हें मतलब मेनली तुसु प्रकाश पाओ घर थो बाद सो कौन थी तेरा नाम भी जरूर आज इस इंटरव्यू में
1: सचिन भाई ये ना पहले स्कूलिंग मेरे वो प्राइमरी स्कूल में करूँ बड़ोली स्कूल है सरकारी स्कूल है ठीक है फिर प्लस टू तक मैं बॉय स्कूल पढ़ाई करी छवीं प्लस टू तक
0: जी
1: तेतियों बाद फिर ग्रेजुएशन जेड़े है मेरे धर्मशाला कॉलेज रे आ
0: जी
1: फिर पत्रकारिता में जेड़े मेरे एम ए मास्टर डिग्री आ सो मैं करे एच पी यूनिवर्सिटी हूँ
0: जी
1: हम अपने सेंटर का टॉपर ही रहा हूँ
0: जी
1: कन्ने तीजा फिर मेरे अक एम ए हो रहे आ जम्मू कश्मीर स्टडी में
0: अच्छा
1: तो तेती में भी मेरा गोल्ड मेडल आ जम्मू कश्मीर स्टडी में भी
0: क्या बात
1: है तुस जी बोलोद कि भाई किया रुचि बने तो जहां अस प्राइमरी स्कूल होंगे ही है ना ता अब जिया चल पाया कि भाई शनिवार करी बैग फ्री डे चल रहा अजकल
0: जी जी जी
1: मतलब सरकार योजना कि भाई हफ्ता अखबारे महीने अखबारे बैग ना लेना बच्चा तो तहने इंदे जमाने हमदे सुनिश्चर बारे बाल सभा
0: अच्छा बाल सभा
1: मतलब इंदिया तेतियो बनदे बाल सभा पर अब ऐसे गादे बनो तो उस तेतियो क्या बनना बाल सभा
0: अच्छा
1: तो सो बस तुझे बाल रा जेड़ा बाल बुना ना तो सो यह सुसंस्कृति ते जोड़िंदा
0: अच्छा
1: तो जे बाल सभा हुंदी तो फिर संचर बारे जेड़ा सेकंड टाइम दू ना तो तेती में गाना बजाना ही चल दो
0: अच्छा
1: तो असु क्या करना के प्राइमरी स्कूल सो जहने सो गाने बजाने टाइम होना तो सो पकड़ लेना द्वात्रा
0: अच्छा
1: कने असु शुरू करीना
0: क्या बात है
1: फिर तेतियों बाद जियो बॉय स्कूल गया तो तेती में फिर थोड़ा एक्सपोजर मिलू तो सो ग्रुप सॉन्ग वगैरह करवादे ही है इनके अक स्कूल थे राका मैडम थे तो सो ग्रुप सॉन्ग जियो 26 जनवरी 15 अगस्त त्यारे ग्रुप सॉन्ग वगैरह तैयारी करवानी फिर एनुअल फंक्शन दो तो तेती में फिर क्या होंगे कि जियो शहर बड़ा स्कूल बॉय स्कूल तो शहर में कोई भी बड़ी एक्टिविटी होने कोई मंत्री छोड़ता कोई छोड़ता कोई बड़ा प्रोग्राम है तो जेडे सांस्कृतिक प्रोग्राम करने वैसे वो करने बॉय स्कूल आले करने गर्ल स्कूल आले
0: अच्छा
1: तेती में फिर एक्सपोजर मिली गो फिर कॉलेज गया कॉलेज में फिर तेती बिचा बिचा स्कूल टाइम में जिया जेडा इंदा धर्मशाला रे वसुंधरा रंग मंच दौलाधार सांस्कृतिक युवा मंच जेडे संस्कृति उठी काम कर दी तीन ते जुड़े गया असा तीन ते काम करू फिर तेतियों बाद जी कॉलेज पुजा तो कॉलेज क्या हुआ के आका हूं तुसो किस्सा दस दू
0: जी
1: आऊ हूँ फाइनल ईयर रा स्टूडेंट तो तेती मा अक एस सी रा कार्यक्रम दो एनुअल फंक्शन मतलब सालारा सालाना सांस्कृतिक समारोह दो तो तेती मा गाना गाने रे प्रतियोगिता अक लोग गायन रे
0: जी
1: कने मुझे तेती गाने रे मौका मिली गो पहले ऑडिशन दे है ता तेहना लाया लाके गाना गुना शुरू नो कर रहा ज्यादा ता ऑडिशन हुआ कने वो सिलेक्ट हुई वो 10 बच्चे थी सिलेक्ट कर लिया गाने को कने गाना लगी पे प्रोग्राम मेरे बारे चले आए गाने रे कर मैं क्या करूँ कि तेहना मतलब अस बार बोर गांदे गुंदे मतलब प्रोग्राम वगैरह कर दी है तब मैं माइक पकड़ूरा कने मैं अगो मतलब मुंडा साहब नचना लग पाया कर मैं इं जोश जोश मा कने स्टेज आऊँ छलांग दे देते गांदे गांदे कने मैं उल्लू अज तक सब मुंह नचाई देना ना
0: जी
1: कने प्रिंसिपल सर चले आए मुझे कहा मुझे रेडी कर लेगा बोलू ये बोलू प्रतियोगिता चल रही बोलू ये सांस्कृतिक कार्यक्रम ना कने फिर दे दे मतलब घटना वही फिर तेतियों बाद जी एम ए पत्रकारिता दौरान यूथ

0: जड़ा इन द यूथ सम्मेलन उमदा स्टेट लेवल रहते थी मां नाटक वगैरह करे डायरेक्शन करे ते थी मां करने बस यही है चल रही हो कार्यक्रम।
1: अच्छा ठीक है तो श्रोतों इतों बाद के मोड़ा यानी जिंदगी सो है जरूर जान लै लेकिन इस प्यारे दे गीत तो बाद

0: सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी इस वक्त ट्यून कर रहा और आओ तुम अपना होस्ट और दोस्त तुम अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर है और आज सोगी गोल्ड मेडलिस्ट भी बोले सकते न राकेश भारद्वाज ने धर्मशाला में बड़ा अच्छा नाम है। राकेश भारद्वाज हर कोई जानता ही है, ऐसे भी जानने की आज कोशिश करूँ दे और बाकी लक्ष्य होता के ना सो भी जानने की कोशिश करूँ कर दे। राकेश जी ये तो है दसीता इतों बाद तुम्हारी जिंदगी में जब तक मैं भी सर्च करो तुम्हें बारे में ये मोड़ भी आके तो है पत्रकारिता रही और के ना सो भी चले गए सो के करीब हुआ फिर अपनी संस्कृति कर गए तस्वीर
1: सो सचिन भाई गाल ना जो कॉलेज में दो कॉलेज में इंदे आकर पत्रिका छप दे पाइंट्स पत्रिका
0: जी
1: सालाना पत्रिका छप दे सो धर्मशाला कॉलेज रे ना आजकल तो मुझे ना आइडिया छप कर दे ने पर तेस टाइम है जी पाइंट्स छप दे है तो त्राई साल कॉलेज दी रहा तो त्राई साल कोई ऐसा साल ना उन्हें देती हूँ मेरा लेखना छपो हुआ
0: क्या बात है
1: कने मुझे याद आ मैं जहना फाइनल में हूँ तो मैं मिड डे मील उठी आकर लेख लिखो हूँ तो हूँ इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होते हैं ता मेरा कुंडल सर ही है श्री आर के कुंडल जी इटे धर्मशाला रह निवासी ना तो मुझे याद है तीन मुझे मेरा काउके सो ही एडिटिंग वगैरह सो ही कर दी इस टाइम लेख वगैरह ना तो तीन मेरा लेख पढ़े करे स्पेशल मुझे हद
0: अच्छा क्या
1: बल्लू के राकेश यार बोलते आपने बहुत अच्छा लिखा और बोलते मतलब तीन बल्लू के भाई अच्छा लिख रहा कहने भाई तू लिखने वाली साइड अगर तू ये अपना फ्यूचर वगैरह तो भाई बच सकता कुछ तेती में जड़ा मेरे फैक्ट कने फिगर ही है ना तो सर बोलू आर्टिकल सो इच्छु हर देना पर जड़ा फैक्ट कने फिगर ते तेन लिख रहा ना बोलू सो वाले आर्टिकल ना कने बहुत बड़ी आर्टिकल तीन मुझे बड़ा एप्रिशिएट करूँ तो फिर सो पत्रकारिता साइड फिर मैं सोचना शुरू करूँ कने फिर मैं एडमिशन ही पत्रकारिता में ले ले फिर जहना एम ए मेरे चल रहे है पत्रकारिता में तो फर्स्ट सेमेस्टर हूँ बाद ही मैं जड़े हूँ सो दिव्य हिमाचल ज्वाइन कर ली रो
0: ठीक
1: है कने प्रोफेशनली भी काम करो दो जड़ा मेरा पत्रकारिता रे टीचर ही है आदरणीय इंदा श्री कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी यहाँ बड़ा मार्गदर्शन रहें दो सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी रे वाइस चांसलर रे फिर पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड रे उपाध्यक्ष भी ना रिव रहे सो तो त्यारा बड़ा तीन असु बड़ा एक्सपोजर दिता
0: अच्छा।
1: मतलब तीन पत्रकारिता वास्ते ना तो तीन क्लास हूँ अलावा भी तेना डायरेक्टर हूँ सेंटर है
0: जी
1: तीन क्लास तो लैने लैने क्लास हूँ अलावा भी जहां तीन कगाना ना कसी चीजा पूछने तो तीन कदी मना ना करने तीन बस यही बोलना कि भाई काम करदे चला बाकी तू सब कुछ ठीक हो बचे होना तो मैं फिर दस के साल कोई पत्रकारिता में रहो तो पत्रकारिता जेड़ा मतलब एज ए पत्रकार हूँ संस्कृति वास्ते कर सकदो तो तीती में फिर मैं छोटे मतलब रिसर्च वगैरह शुरू करे ती में लोक संस्कृति
0: जी
1: फिर सोती है चल रही काम
0: अच्छा क्या बात है आइए श्रोता और भी बहुत सारी जानकारी ने इन्हें तो लेने वास्ते जानकारी बोल सकते ना और कम्युनिटी वास्ते क्या क्या काम कर रहे हैं राकेश भारद्वाज सो जानने वास्ते फिलहाल हुण दे ने प्यारे दे गीत राकेश जी गुनगुनांदा है बड़ा अच्छा ना तो है दसो अपनी स्टेज री कहानी तो है दसी कि गंदे गंदे तो है स्टेज तो थले चले आई थी है तो कोई अक प्यारे दे गीत गदियाली गीत
1: बेड़ा दे आ पालणुआ तू इंदा किना है बेटा दे आ पालणुआ तू इंदा किना है इंदा किना इंदा मेरी जान बेटा दे आ पालणुआ तू इंदा किना है
0: बिल्कुल भेड़ा खेरे आप पालनु आ तू इंदा कौन हो राकेश जी लेन देन भेड़ा खेरे पालनु जो और वापिस फिर गल बात कर देने श्रोतों इस गीता थो बाद

0: 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा होने कर देना रेडियो गुंजन में अपने आरजे रेडियो जो की सचिन कपूर सो की और राकेश भारद्वाज जी असोगी मौजूद ना। राकेश जी अबे इंदर संस्कृति पर तो है बड़ा काम कर रहा जे की तो है दसो है ना। अबे मुझे ये दसा क्या क्या काम कर रहा संस्कृति पर और इतों बाद अगला सवाल में रहे या तुसोगी कि जो आजकल छेड़छाड़ भुचु कर दे या संस्कृति जो ले करे ठेरे बारे में क्या कहना और संस्कृति वास्ते क्या क्या काम कर रहा पहले तो ये दसा।
1: सचिन भाई तुसे दो सवाल में जो किठे पूछ ला
0: जी
1: मैं यही सोच रहा हूँ कि तुसे बारे बारे
0: पूछना
1: बारे तुसे दो सवाल पूछना
0: चलो पहले पहले सवाल
1: करने रही है ना
0: जी।
1: मैं तो सो दसो के जिया जहना हूं स्कूल ले पढ़ दो तो तहना हूं या ग्रुप वगैरह ते जुड़ रो
0: जी
1: जड़ा तोलादार संस्कृत
0: जी दसी बके
1: फिर वसुंधरा रंगमंच फिर और भी इंदे कई मनोठी प्रोग्राम करना ते तिया ते काम करदे है
0: जी।
1: सो ता एज मतलब तुसे ए लेकर चला के भाई एज आर्टिस्ट काम करू तिया मतलब चाहे सो स्टेज प्रोग्राम हुआ चाहे कोई हुआ सो फिर दूजा जो है ना अस चले आए पत्रकारिता में तो पत्रकारिता में फिर लिखने का काम शुरू हो जाता तो फिर सो जिया छोटे छोटे कई बार भाषा एवं संस्कृति विभाग रे बैठ गया कई बार कसकरा प्रोजेक्ट चले आए तो तिया जो मतलब शोध पत्र लिख कर दिता है फिर जड़ा तुसे दसो अक स्टार्टिंग में जहना मेरा परिचय दिता हो कि कला उत्सव जड़ा राष्ट्रीय कला उत्सव थो बेसिकली सो स्कूल रा प्रोग्राम थो तो ते वास्ते अस आक डॉक्यूमेंट्री बनाए डॉक्यूमेंट्री बनाई फिर आक लघु शोध जती बल देना सो लघु शोध करे करे सो प्रस्तुत करो तेती मा मेरा फ्रेंड ही पी एच डी स्कॉलर है सो हरीश तसो पी ट्राइबल उठी पी एच डी करो वरदा मनु जेड़ा मतलब काम करो वरदा एक संस्कृति उठी तो जेड़ा भी असु हेल्प मंगदा से तुम हेल्प कर देना। अब जिया बाहर रह कई बंदा अक एठी फॉरनर थो मुझे तो सिर ना ना याद रही रखा कि सो कोई 8-10 साल पुराने गापा तो सो फॉरन हो छूरो स्पेशल स्कॉलरशिप मा तो तिनिया गद्दी संस्कृति उठ अपना रिसर्च कर रहा तो तिनिया क्या कर रो कि भाई तिनिया गद्दी संस्कृति के बारे में सुन रो कि भाई सो बोले रे भक्त हमने कहने भाई नुआला जेड़े त्यारे पूजा परंपरा तो जहने तिनिया रिसर्च शुरू करूँ तो तिनिया बोलो कि भाई मेरा रिसर्च खत्म होना था सुबह नुआला देना तो तेरा रिसर्च में हेल्प करे करे कने बाद जहना तेरा रिसर्च खत्म हो रहा अस मैकलोडगंज आक नुआला करूँ।
0: अच्छा क्या बात है
1: मतलब सो मेन ऑर्गेनाइजर था सो ही पर सो किया होना का सब होना सो असे ही सारा कुछ कर
0: मतलब सिस्टम फिट पूरा तो हो गया जी। ते दुआ सवाल जो तो ठेरा जवाब भी दे दिया कि संस्कृति होगी जो छेड़छाड़ बुचु कर दिया ठेरे बारे के बल दें तो है
1: जड़ी है संस्कृति ते छेड़छाड़ बुचु कर दिया ना इति मा सब भी हो जड़ा मतलब जिम्मेवार ना सेंदे बुढ़े बुजुर्ग ना।
0: अच्छा
1: अबे बल्ला काउ
0: काउ
1: काउ के तिया ना आजकल अपने बच्चों का ना अग्ञा ना कन्ना वाटे लाना बंद करी तुरा तो कन्नो बाटे जो है ना तिया लाना शुरू कर लेना ना तो फिर सो अब जी हाँ आऊ कुछ भी काम कर ला कुछ भी काम कर ला या अगर मेरा बड़े बुजुर्ग अगर मुझे सही दिशा में ना बेच ले तो मुझे ना पता लगना मुझ वही कर दे रहना ठीक है जी। अगर अखबार कन्नो बाटे लगू रहे बनता फिर
0: क्या राकेश जी तुसो लगता कि जो आजकल इंदे युवा करू कर देने इंस्टा अंदर अधी अधूरी एड्रेस लगाए करे इंदी संस्कृति जो दर्शंदे इंदी जो इंदी नुआचड़े है जो इंदा चोलो डोरो है सो करखा न करखा पाठ है इंदी संस्कृति जो दर्शाने रहा तो क्या तुसो लगता कि तड़ी भी इंस्टा या फेसबुक में या अदर सोशल साइट्स में छेड़छाड़ बच्चों कर दे।
1: सचिन भाई मैं सो तुसो पहले गल दस ना जिया पहले काम कर दे जी इन बुढ़े बुजुर्ग कुछ गल दस कहने सो अस मना ध्यान ले करे कहने फिर सो करने ते तिया कोई गलती होने तिया दसने अब जेड़ा न युवा तो तिया के करना कि तिया फेसबुक कने इंस्टाग्राम हो मतलब कॉपी करने सो चीज तो जहने गलत बचाने तो फेसबुक कने इंस्टाग्राम तिओ करेक्ट करे कर दसना नहीं अब मन लिया मैं वीडियो पाईता कोई भी फेसबुक में तो अगर तेती कोई गलती हो लेता फेसबुक का कभी कभी भी ना दसना कि भाई तीन गलती आ ठीक है सो जेड़ा पेगो सो पेगो फिर अग्गे बंदे अब आऊँ तुसु आके एग्जाम्पल दिंदा हूँ पिछे ते आऊँ नाना लेना चाहता हूँ इनका हिमाचल रे बहुत बड़ा मतलब आर्टिस्ट सो ता अक मेरे मतलब जान पहचान में दिल्ली हो ना सो आर्टिस्ट ना तो तिया आके एल्बम करे ठी चंबे वगैरह ना तो तिया क्या करूँ के तिया लुआन चढ़ी ते चढ़े ऊपर तिया वो चुन्ने चढ़े मंदे आ तो सो जड़े मातर चुन्ने ला लेती है
0: अच्छा
1: कह सो तो पाई भी दिता मतलब यूट्यूब वगैरह में फिर मैं तिया बोलू भाई ये चुन्ने जड़े मंदे मातर चुन्ने ना लगते मातर चुन्ने लाग मंदे कने इंदा जड़ा सो रीड़ा हिमाचल लोकल बंदे प्रॉपर गाइड करना तीयो तो जड़ी चीज पकड़ाने तीन बना यही कल्चर
0: तीयो
1: तो ना पता मिंजो कने तू सुहाई मनु चिंता कि ठीक चीज प्रोवाइड करना ये नहीं कि भैया सो पैसा मिलो करता था ऐसे ये चीज अवेलेबिलिटी या जड़ी चीज मिली सो पकड़ाई थी कने बोलो ये कल्चर है सो सो हाँ सचिन भाई का
0: जी बिल्कुल और भी बहुत गल बात कर ले समय थोड़ा करे अभाव समय रहा सुलेश होता हूँ लेकिन आइया फिलहाल प्यारे दे गीत हूँ दिन

0: सामुदायिक वेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा है कार्यक्रम इस वक्त इंदी अपनी गप्पा चल रही है और चल रही है राकेश भारद्वाज जी हो गए ताइया जी राकेश जी ले चलते हैं। राकेश जी ये जो चीज आप बुच्छू कर दी आंसू हो गए है ना है बल्ले सकते हैं आंसू हो गए चीज आप बुच्छू कर दी तो इन चीजा जो है क्या करी सुधार न क्या सुधार हो सकता और गंदे गंदे तुम्हारा संदेश क्या होना दो सवाल फिर पूछ लिया कंफ्यूज मत बुंदे पहले सवाल जवाब दिया जी
1: सचिन भाई ये जेड़ा तुसे सुधारने वाले गप करो दे ना
0: जी
1: ये गप अक्की होती ते बने हां सो बने हां सिक्स ला समझ दे
0: जी बिल्कुल
1: सिक्स ला ते ए तुस बोलना सिक्स ला ते कियां बने हां तो सो इया बने मन लिया मैं कोई भी काम करना लूरा लोक संस्कृति उठे तो जे अगर आऊं तिहारे जान कदरत ते कोई सिक्स ला कर लेला तब मुझे सही जानकारी मिल जाने
0: जी
1: कने आऊं बड़ला आऊं ज्यादा ही जान कदर हूं कने रात 12 बजे फेसबुक कने गूगल खोले करे लगे संस्कृति में क्या कने अगले रोज दिया काम करना शुरू होला कने गलती फिर मुझे पता न लगना
0: जी
1: तब मेरा ये मानना जड़ा भी बंदा संस्कृति में मतलब इतना काम करो ये लोक संस्कृति में ही ना जेठी मर्जी मतलब सो जैस मर्जी फील्ड में काम करो जी अगर दो तीन जान कदरत है जी आप अपने आप को छोटा करे करे अगर सिक्स ला कर ले ला तो दिस ये बहुत बढ़िया चीज है मतलब प्रस्तुत है कहते से बड़ी अच्छी वो मरने
0: जी बिल्कुल तो कर खन कर का ईगो चले इन दे कि आऊं बस की लगला पुछला झुकला तो मेरी ईगो जो ये चीज हर्ट कर दे
1: बस हम सो चीज ना बोलना चाहो कर दो डेढ़ तुसे बोल लेते
0: जी बिल्कुल ता अना जो नेचुरल चीज है इन दे मन उन अपने हुनु कर देना और ये सच में फैक्ट है और हर आऊं बोलनो हर कलाकार अंदर इफेक्ट है ये सिक्सला संस्कृति जो लेकर जहन ब्याह कोई भी काम करता है तो जरूर सिक्सला के सो लेना चाहिए
1: संस्कृति है ना सचिन भाई जेड़ा भी काम करना ना
0: जो भी
1: है जी हां मतलब जेड़ा भी काम करता है ना अपने गुड फेथ में चार पांच छह बंदे हमदे ना
0: जी जी जी
1: तो क्या हमदा कि तिया ते सिक्सला कर ले
0: जी
1: कसी काम करने हो तो ठेरा जेड़ा परिणाम होना ना
0: सो अच्छा
1: सो बड़ा अच्छा होना कने जे अगर बड़ला के भैया से अकेला सर्वोपरि ता सो फिर ठेरा परिणाम जेड़ा हमदे सो दुर्गा में थोड़े खराब होते हैं ना
0: जी बिल्कुल जी राकेश भारद्वाज जी तुसु होगी गलबात करी करी और बहुत कुछ जानकारी असु सभी मुड़े ने जितने भी है युवा इस समय हुनु कर देन असु सभी अनेको जानकारी के न सो तुंदे प्रति मुड़े ने तुंदा बहुत बहुत धन्यवाद करनो तहे दिल तो गंदे गंदे युवा वास्ते क्या संदेश देना चाहते तो है क्या बोलना चाहते न अपने युवा जो
1: सचिन भाई पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो रेडियो गुंजन में इन्हें मौका दिता कने तुस बड़ी बड़ी बधाई बोना कि तुसे अपने लोक संस्कृति गद्दी संस्कृति वास्ते तूना काम करवरदे न कने रेडियो रे माध्यम हो लोग को जागरूक करवरदे न आऊं एरू करदा पिछले कई साल हूं तुसे जुजारू बुझेगार लग रहा है इस कम्मा मा कने बड़ी बड़ी तुस ठहरताए बधाई होना कने दूजी गल तुसे बोलू के युवा वास्ते संदेश तब मेरा युवा वास्ते यही संदेश आ कि जेडे इंदे संस्कृति है ना तेतियो अग्गे जीवित रखना काउ की संस्कृति जीवित रह ले ना इंदे जड़ मजबूत रह ले ता अग्गे तना भी मजबूत रहना कने अग्गे टहनी भी खरी फलनी फूलनी ना कन जे अगर जड़ होके गए इंदे अगे तना भी कमजोर बुझाना तो टहनी तो फिर कौन कहनी ना तो मेरा यही संदेश है युवा वास्ते कि अपनी संस्कृति से जुड़ कर रहे ठेरे बारे में कोई भी काम करना हो पहले एक ही दूजे हो सलाह मशवरा करी करे कने फिर संस्कृति ताई काम करना ताकि अस जेड़े युवा ने असु अगे जेड़े इने वाले जनरेशन आ सो मतलब प्योर संस्कृति जो है इं मतलब सो मिक्सअप वाले जेड़े संस्कृति होंगे ना जेती में छेड़छाड़ भी छोरे होंगे सो न रोस न सह बस यही मेरा संदेश है
0: जी राकेश भारद्वाज जी तो है वीडियो गुंजन में आए अपना कीमती समय तो है सभी श्रोता वास्ते दिता तुंदा तहे दिल तो धन्यवाद करनो धन्यवाद जी।

नमस्कार, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे 5 जून 2026 का आज का ये खास समाचार बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर।

0: ऑडियो जंगल।
1: हरित पंचायतों की आय का 25% अब अनाथों विधवाओं के कल्याण पर होगा व्यय। हिमाचल के 26 कॉलेजों में शुरू होगा 4 वर्षीय स्नातक ऑनर्स विद रिसर्च कोर्स। परीक्षा केंद्र बनाने के लिए निजी संस्थानों से 30 जून तक मांगे ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल में आपदा मुक्त व पर्यावरण अनुकूल विकास मॉडल लागू होगा। अब समझ

विस्तार से। सरकार ने हरित पंचायत पहल को सामाजिक सरोकारों से जोड़ते हुए बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत हरित पंचायत पहल अब राज्य भर के अनाथों और विधवाओं के कल्याण एवं उत्थान में भी योगदान दे। इस कार्यक्रम के तहत राज्य की 100 ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाट क्षमता की भूमि आधारित सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 से 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या वाले 26 सरकारी डिग्री कॉलेजों में 4 वर्षीय स्नातक ऑनर्स तथा ऑनर्स विद रिसर्च कोर्स शुरू किए जाएंगे। वहीं 1000 से 1500 विद्यार्थियों वाले 3 कॉलेजों को 4 वर्षीय यूजी ऑनर्स कोर्स संचालित करने की अनुमति दी गई है, जबकि शेष 91 सरकारी कॉलेजों में मौजूदा 3 वर्षीय स्नातक डिग्री कोर्स जारी रहेगा। अग्निशमन विभाग को और अधिक हाईटेक और मुस्तैद बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग के बेड़े में 40 नई क्विक रिएक्शन व्हीकल शामिल हो चुकी हैं, जबकि 33 नई बड़ी गाड़ियां पहुंच चुकी हैं जिनकी मॉडिफिकेशन की जा रही है। इन नए वाहनों के आने से न केवल विभाग की मारक क्षमता बढ़ेगी, बल्कि लंबे समय से सेवा दे रहे कंडम और पुराने वाहनों को भी बदला जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय की सितंबर में होने वाली परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र बनाने की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक निजी संस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने स्कूल की लॉगिन आईडी के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहाड़ों को चीरकर फोरलेन कंक्रीट के बढ़ते जंगल और विकास के नाम पर हो रहा पेड़ कटान रोकने के लिए प्रदेश में आपदा मुक्त और पर्यावरण अनुकूल विकास मॉडल लागू होगा। पर्यावरणविद भी इसी मॉडल को लागू करने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। पर्यावरण के प्रभावित होने से आपदा के जोखिम बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि अब हिमाचल को आपदा मुक्त और पर्यावरण अनुकूल विकास मॉडल की जरूरत महसूस की जा रही है। देश भर में आए करीब 100 युवा हफ्ते भर तक प्रदेश खासकर किन्नौर की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, विरासत, रणनीतिक महत्व और परंपराओं से रूबरू होंगे। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत किन्नौर के इस भ्रमण के दौरान युवाओं को यहां के अलग अलग गांव में जाकर स्थानीय लोगों, पंचायतों, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों से मिलने का अवसर भी मिलेगा, जिससे वे न केवल देश के विविधतापूर्ण संस्कृति से अवगत होंगे बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के विभिन्न आयामों को जान सकेंगे। देश के उत्तरी राज्य को ताजी हवा देने वाले हिमाचल के जंगलों में हरित वन आवरण बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार नई पहलें कर रही है। प्रदेश के वन विभाग ने पहाड़ी प्रदेश में वन क्षेत्र को 2032 तक 32% करने का लक्ष्य रखा है। राज्य में अभी कुल भूभाग का करीबन 28% वन क्षेत्र है। एचआरटीसी के कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर फिर चिंता जताई गई है। कर्मचारियों के साथ लगातार सामने आ रही मारपीट, अभद्र व्यवहार और धमकी की घटनाओं के बीच कर्मचारी संगठनों ने सरकार से एचआरटीसी कर्मियों को विशेष सुरक्षा प्रदान करने की मांग उठाई है। यूनियन का कहना है कि बसों और डिपो में ड्यूटी के दौरान चालक, परिचालक व अन्य कर्मचारी कई बार असामाजिक तत्वों के निशाने पर आ जाते हैं, जिससे उनके लिए सुरक्षित वातावरण में काम करना मुश्किल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगमों और नगर निकाय में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनावों को लेकर अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पदेन सदस्य यानी विधानसभा सदस्य स्थानीय निकायों के शीर्ष पदों के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वे हिमाचल प्रदेश के नगर निकायों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनावों की प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के पूरा करें। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कृषि मंत्री चंद्र कुमार के बेटे पूर्व सीपीएस नीरज भारती ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की। इस्तीफा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार और जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनुराग शर्मा को भेजने की बात की है।
हिमाचल प्रदेश में लगाए जा रहे एंट्री टैक्स के विरोध में पंजाब में कुछ निहंग सिंह जत्थेबंदियों ने खालसा टैक्स के नाम पर हिमाचल से आने वाले वाहनों से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। इसका टैक्सी ऑपरेटरों और अन्य वाहन चालकों ने विरोध किया है। टैक्सी चालकों का कहना है कि किसी भी वाहन से इस प्रकार जबरन राशि वसूलना उचित नहीं है। इससे न केवल यात्रियों और वाहन संचालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, बल्कि अंतर्राज्यीय आवागमन भी प्रभावित हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उच्च शिक्षा संस्थानों में संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 10 सरकारी महाविद्यालयों में नए दाखिलों पर रोक लगा दी है। ये ऐसे कॉलेज हैं जिनमें छात्र संख्या 75 से कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वेंजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक वार्ता की, जिसमें महत्वपूर्ण खनिजों, फार्मास्यूटिकल, कृषि और ऑटोमोबाइल सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि भारत अगले 6 महीनों में कम से कम 2 से 3 मुक्त व्यापार समझौते लागू करेगा, जबकि 2027 में ऐसे 3 से 4 और समझौते लागू होने की उम्मीद है। उनका कहना है कि पिछले 3.5 वर्षों में भारत ने 9 FTA को अंतिम रूप दिया है, जिनमें मॉरिशस, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ समझौते शामिल हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत कांगड़ा द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र मोहली खनियारा के MBA विभाग के सहयोग से चित्रकला प्रतियोगिता एवं पौधारोपण अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना था। कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, स्वच्छता तथा सतत विकास जैसे विषयों पर अपनी रचनात्मक अभिव्यक्तियां प्रस्तुत की। विद्यार्थियों की रचनाओं ने प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाया। अब एक नज़र मौसम की ओर। देश भर में भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों के लिए गुरुवार को बड़ी राहत की खबर लेकर आए। भारतीय मौसम विभाग ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जून तक भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई इलाकों में 7 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापिस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। शाम के 6 बज गए हैं और श्रोताओं, ये समय रहता है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का ये सफ़र श्रोताओं आज आपका तय होगा मेरे साथ, यानी कि आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। सबसे पहले सभी श्रोताओं को सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और अपने अपने काम करने के साथ साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ भी जुड़े होंगे। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला की शुरुआत हम करते हैं इन प्यारी सी लाइनों के साथ। ये लाइनें सिर्फ और सिर्फ लाइनें नहीं होती श्रोताओं, बहुत कुछ हमें सिखाती हैं, समझाती हैं। और आज की लाइनें क्या हमें समझाती हैं वो सुनिए। जिसे अपनी कीमत नहीं पता वह खजाने के सामने भी खाली रह जाता है। बिल्कुल श्रोताओं, हमारे अंदर भी खजाना है अगर हम उसे ढूँढें तो। इसलिए हमें अपनी कीमत का पता होना चाहिए और अपने अंदर जो गुण हैं उन्हें और ज़्यादा निखारने की कोशिश भी हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत बातों के साथ तो हो गई है श्रोताओं, और आप सभी को इंतज़ार रहता है प्यारे प्यारे गीतों का भी। तो गीतों के लिए हम देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। अभिलाषा फिल्म का ये गीत अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज़ में।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला के साथ आप जुड़ चुके हैं श्रोताओं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। इस प्यारे से गीत के बाद हम अपनी बातों का सिलसिला शुरू करेंगे श्रोताओं, लेकिन आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि हर गीत जो है वो कई गीतकारों ने गाया होता है, और जैसे कि मैंने कहा था कि लता मंगेशकर की आवाज़ में, तो ये जो गीत आपने अभी सुना वो लता मंगेशकर की आवाज़ में भी है, लेकिन लता मंगेशकर की आवाज़ में आपको किसी दिन फिर से ये गीत ज़रूर सुनवाएंगे, लेकिन आज जो आपने गीत सुना वो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुना। श्रोताओं, आज 5 जून का दिन है और आज का दिन आप सभी जानते होंगे कि आप लोगों ने आज क्या किया होगा और आज का दिन हम लोगों ने किस तरह से मनाया। और अगर आप सभी जानते हैं तो ज़रूर आप बोलेंगे कि आज हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। तो श्रोताओं, आज आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करूंगी कि आज आप सभी ने इस दिन को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया होगा और मनाना भी चाहिए। श्रोताओं, ये जो पर्यावरण है ये हमसे जुड़ा है और हम पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। हम दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। अगर हमें सही रहना है, ठीक ठाक अपनी ज़िंदगी को चलाना है, तो हमारा पर्यावरण भी बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इसी पर्यावरण में जीते हैं, इसी वातावरण में जीते हैं, और इसे किस तरह से हमें संभाल कर रखना है, किस तरह से इसकी सफाई रखनी है और क्या क्या हमें करना है, ये हम सभी बखूबी जानते हैं। लेकिन जानना काफ़ी नहीं है श्रोताओं, उसे करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ज़्यादा पेड़ लगाइए, पेड़ हमारे लिए ज़रूरी है, और हम तो क्या छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, उन्हें स्कूल में भी पढ़ाया जाता है कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और आज हो सकता है कि सभी स्कूलों में बच्चों को ये पाठ पढ़ाया गया होगा कि पर्यावरण क्या है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, पेड़ पौधे लगाना क्यों ज़रूरी है। लेकिन श्रोताओं, हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि कई जगह पर यह भी देखा गया है कि पर्यावरण होता क्या है, किस लिए ज़रूरी होता है, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। सिर्फ और सिर्फ एक पौधा लगा दिया, उसकी एक फ़ोटो क्लिक कर ली और बस वो वायरल कर दी, यहीं तक पर्यावरण दिवस रह जाता है। लेकिन हम यही कहेंगे, कहीं भी आपको मौका मिलता है तो आजकल के जो बच्चे हैं, जिन्हें हम ये कहेंगे कि 3 साल के या 3+ जो बच्चे हैं, उन्हें पर्यावरण का पाठ पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो समझेंगे कि पर्यावरण हमारे लिए कितना ज़रूरी है, तो हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में पर्यावरण की संभाल वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और हमें भी, हमारा भी कर्तव्य बनता है पर्यावरण के साथ जुड़े रहें और पर्यावरण के लिए काम करें, पर्यावरण के लिए सोचें। तो कार्यक्रम में आज इस विषय पर और भी बातें होंगी श्रोताओं, लेकिन फिलहाल के लिए कार्यक्रम में हम आपको लिए चलते हैं आज के कार्यक्रम के अगले इस खूबसूरत से गीत की ओर।

0: किसी से मोहब्बत ना हो जाए।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुना प्रोफेसर फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। श्रोताओ, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं और आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। साथ ही श्रोताओं, आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को 88.4 MHz पर हमीरपुर के ढटवाल की आवाज़ पर भी आप सुन सकते हैं और सुन भी रहे होंगे। तो हमीरपुर के जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को भी सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी ठीक ठाक होंगे और आप सभी को भी विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद ये भी है कि आप सभी ने भी आज के दिन ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जो पर्यावरण के लिए अच्छा रहता होगा या हमारे लिए भी ठीक रहता होगा। तो श्रोताओं, ये जो दिन बने हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें याद दिलाने के लिए है कि भाई पर्यावरण भी कोई चीज़ है, क्योंकि पर्यावरण के लिए सोचना तो रोज़ बनता है। एक अकेला दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कि हम सिर्फ़ और सिर्फ पर्यावरण की देखरेख करें, उसके बारे में सोचें। इस चीज़ के लिए हमें रोज़ सोचना चाहिए, क्योंकि रोज़ाना हम डिपेंड हैं पर्यावरण पर। तो श्रोताओं, आज हम ज़रूर इस विषय पर बात करने जा रहे हैं और साथ ही हम बात ये भी करेंगे कि पशु पक्षियों की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी, हरियाली और पशु पक्षियों की चहचहाहट ही एक स्वस्थ पर्यावरण की पहचान होती है श्रोताओं। लेकिन बढ़ते प्रदूषण, जंगलों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। देखो श्रोताओं, जब हम एक पेड़ लगाते हैं, पेड़ तो क्या, हम पौधा लगाते हैं, और उस पौधे को पेड़ बनने में कितना समय लग जाता है, बहुत समय लगता है। लेकिन जब हम काटते हैं तब कितना समय लगता है, बहुत कम। और खुद सोचिए कि वो पेड़, जिस पेड़ ने कितने सालों तक हमें क्या क्या नहीं दिया, और हम छोटे से स्वार्थ के लिए अपने लिए उस पेड़ को काट देते हैं, तो मतलब देख के बुरा भी लगता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पेड़ों को काटना भी नहीं है, क्योंकि आजकल के समय में हमें हमारे जो रोड हैं वो भी हमें अच्छे चाहिए, चौड़े चाहिए, हमें मार्केट भी अच्छी चाहिए, तो उस चीज़ के लिए फिर हमें वनों की कटाई करनी पड़ती है। लेकिन वनों की कटाई तो हम कर देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उसकी भरपाई हमें ही करनी पड़ेगी। और आज उम्मीद करती हूँ कि सभी ने ज़रूर अपने हाथों से एक एक पौधा, एक एक पेड़ ज़रूर लगाया होगा। श्रोताओं, कई बार हम बातों में ही करते हैं लेकिन लगाते नहीं हैं, लेकिन ये शौक़ होना चाहिए। शौक़ भी हर किसी को तो नहीं होता, लेकिन हाँ, जिन्हें पर्यावरण से प्यार होता है वो पर्यावरण के बारे में सोचते हैं और उसके लिए करते भी हैं। और आज विश्व पर्यावरण दिवस कहाँ कहाँ मनाया गया, किस तरह से मनाया गया, उस पर भी हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे और आप तक पहुँचाएँगे जानकारियाँ भी। तो श्रोताओं, फिलहाल के लिए एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम, आपको बताएंगे आज का दिन कहाँ कहाँ किस तरह से मनाया गया। तो गजब फिल्म का गीत सुनवाते हैं आपको लता मंगेशकर की आवाज़ में।

कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ, और आप सभी ने इस समय रेडियो पर ट्यून किया है 91.2 MHz पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं, अभी आपने सुना ये गीत, और हवा पर आधारित ये गीत था, और सावन पर भी। सावन कैसा होगा आने वाला, वो तो अब वक्त ही बताएगा, क्योंकि सावन जो है वो अभी से थोड़ी थोड़ी दस्तक देना शुरू कर दिया है। और श्रोताओं, अभी कुछ सालों से जो है वो जैसे ही ये मौसम जो आने लगता है ना, तो थोड़ी सी घबराहट शुरू हो जाती है, क्योंकि बारिश जो होती है तो भाई वो तो फिर अपना सा रंग दिखा ही देती है। और जहाँ तक हवा की बात इस गीत में हुई है श्रोताओं, तो हवा की बात ज़रूर करेंगे। आजकल देखिए, हवा जो है हमें बहुत कम मिलती है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे ही नहीं रहे हैं। अगर पेड़ पौधे होंगे तब तो वो हवा देंगे, अगर वो होंगे ही नहीं तो हवा कौन देगा। इसलिए आजकल हमें सहारा लेना पड़ता है अपने घरों में पंखों का या फिर एसी का। एक समय ऐसा था कि धर्मशाला में एसी तो क्या, पंखे भी बहुत कम लगते थे। गर्मियों में इतनी गर्मी नहीं होती थी, बाहर बैठ जाइए आप पेड़ों की छाँव में तो बहुत अच्छी हवा चलती थी। लेकिन अब वो हवा कम हो गई है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंगें जो है हम लोगों ने बना दी हैं, घर ही घर, हर तरफ रोड ही रोड, और पेड़ जो है वो बहुत कम मिलते हैं। पेड़ों की ताज़ी हवा के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है चलने की, और कहीं ना कहीं हम लोग उस हवा को लेने के लिए पहाड़ों की तरफ जाते हैं। और जब पहाड़ों पर जाते हैं और ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो उस हवा के सामने ये पंखे, ये एसी सब फेल हो जाते हैं। हम तो ये कहते हैं कि हम लोग तो नेचुरल एसी का आनंद लेते हैं जो पहाड़ों पर रहते हैं। और श्रोताओं, ये एसी हमारे कभी ख़राब ना हो, चलते रहें, ऐसी कामना हमें करनी चाहिए, और इसे दुरुस्त रखने में हमारा जो सहयोग है वो होना चाहिए। तो इस गीत से पहले हमने बात की थी आज विश्व पर्यावरण दिवस कहाँ कहाँ और कैसे मनाया गया, ये जानकारियाँ भी आप तक पहुँचानी है, तो चलते हैं जानकारी की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत कांगड़ा द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र मोहली खन्यारा के MBA विभाग के सहयोग से चित्रकला प्रतियोगिता और पौधारोपण अभियान का आयोजन किया गया। साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम का उद्देश्य जो था वो विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना और साथ ही प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना था। विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, स्वच्छता और सतत विकास जैसे विषयों पर अपनी रचनात्मक अभिव्यक्तियां प्रस्तुत की। साथ ही श्रोताओं, पौधारोपण अभियान चलाया गया जिसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्वयं सेवकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतिभागियों ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपित किए तथा उनके संरक्षण का संकल्प भी लिया। तो श्रोताओं, ऐसा ही हर जगह रहा आज का दिन। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो हर जगह मनाया गया। बहुत सारे विद्यार्थियों ने पर्यावरण के लिए बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी थॉट्स जो है वो अपनी दी। और हम तो यही कहेंगे कि ये बातें बातें ना रह जाएं और इन पर अमल भी हो, पर्यावरण के प्रति सब जागें, ये ज़रूर हम उम्मीद करेंगे। और श्रोताओं, पर्यावरण की जितनी बात की जाए कम है, लेकिन आज तो हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि कई बार हम लोग जो है उन बातों को सोचते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, बस सुन लिया हो गया ख़त्म। लेकिन जब तक हमें भी कोई झिझोड़े ना या बार बार एक चीज़ को बोले ना, तब तक हम भी नहीं समझते कि सच में ऐसा है। क्योंकि आजकल एक तो समय नहीं है हमें सोचने का, हम अपने बारे में ही नहीं सोचते, अपने रिश्तों के बारे में नहीं सोचते, तो पेड़ पौधों के बारे में और पर्यावरण के बारे में तो कौन ही सोचता है। लेकिन श्रोताओं, सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये हमें बता भी रहा है कि पर्यावरण कितना ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो बहुत छोटी एज में बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हो रही हैं जो हमने कभी सुनी भी नहीं थी। पुराने समय में हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग थे, शायद उन्हें भी बीमारियां बहुत कम लगती थी, क्योंकि वो हवा साफ़ सुथरी थी, हर चीज़ में एक ताज़गी थी, शुद्धता थी। लेकिन वो शुद्धता ख़त्म होती जा रही है, और आगे भी अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो फिर वक्त ही बताएगा कि क्या होगा।
खैर कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में हम आगे बढ़ेंगे श्रोताओं, और अभी फिलहाल के लिए कार्यक्रम में समय हुआ है एक छोटे से अंतराल का। इस अंतराल के बाद फिर से कार्यक्रम में जुड़ेंगे और आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम में एक खूबसूरत सा प्यारा सा गीत। तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: श्रोता, अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। श्रोताओं, अब बातचीत भी हो गई और अंतराल भी हो गया और अब हमने बढ़ना है आगे। आपको सुनवाना है एक बहुत ही प्यारा सा गीत। श्रोताओं, ये गीत ऐसा है जिसे जब सुना जाए तो दिल करता है बार बार सुने। मेरा पर्सनल, वैसे तो मैं इस गीत को सुनती हूँ तो अच्छा लगता है और साथ में गाती भी हूँ और सुनती हूँ तो दिल करता है कि दोबारा सुना जाए। तो श्रोताओं, चलिए देखते हैं कौन सा वो गीत है और हो सकता है आपको भी ये गीत पसंद आए और आप भी इसे गुनगुनाएंगे। तो कौन सा गीत है इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में आपने सुना ये प्यारा सा गीत और ज़रूर इस गीत को आपने भी पसंद किया होगा। तकदीर पर ये गीत था और फिल्म विधाता से लिया गया था। आवाज़ें थी सुरेश वाडकर और अनवर की। श्रोताओं, तकदीर की बात जब हम करते हैं तो कई बार हम लोग भी अपने रोज़मर्रा के जीवन में बार बार ये बात बोलते हैं कि मेरी किस्मत कैसी है, मेरी तकदीर कैसी है, मेरे हाथों की लकीरें कैसी हैं। हम बहुत बार अपने आप को और अपनी किस्मत को, अपनी तकदीर को कोसते हैं। जब भी कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं कि किस्मत बड़ी अच्छी है, और जब कुछ बुरा होता है तो हम कहते हैं तकदीर ने साथ नहीं दिया। लेकिन श्रोताओं, क्या सच में हमारी पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ तकदीर के भरोसे चलती है? तकदीर अपना स्थान ज़रूर रखती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारा परिश्रम, हमारा आत्मविश्वास और हमारी लगन। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेता है। साथ ही श्रोताओं, इतिहास भी गवाह है कि दुनिया के अधिकांश सफल लोगों ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ मुकाम हासिल किया है। अगर वो लोग भी तकदीर का इंतज़ार करते रहते तो शायद कभी सफलता तक नहीं पहुंच पाते। जब हम श्रोताओं खुद पर विश्वास करते हैं तो असफलता भी हमें नया सबक देकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आत्मविश्वास हमें ये एहसास कराता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हम उनका सामना कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक सोच रखिए और आगे बढ़ते रहिए। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में भी अब हमें भी आगे बढ़ना है और आपको सुनवाना है कार्यक्रम का अगला गीत, बाजीगर। इस फिल्म का गीत अब आप सुनने जा रहे हैं श्रोताओं, विनोद राठौर की आवाज़ में।

इक्यानवे दशमलव दो मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। शाम का ही समय है और इस समय आप सभी अपने अपने काम भी करते हैं, साथ ही कहीं ना कहीं छोटी मोटी वॉक के लिए भी आप लोग निकलते ज़रूर हैं और साथ में आपका रेडियो गुंजन धर्मशाला भी आपके साथ रहता है और आपका मनोरंजन भी करवाता है और आपको जानकारियां भी देता है श्रोताओं। और अब वो टाइम नहीं रह गया जब बड़े बड़े रेडियो हम लोग कहीं ना कहीं उठा कर रख देते थे और सुनते थे। अब तो ये जो रेडियो है ये हमारे फ़ोन में ही आ गया है, छोटे से फ़ोन में हम जहाँ मर्जी चले जाएँ वहाँ रेडियो का आनंद ले सकते हैं और बातों को सुन सकते हैं, साथ ही अपने काम भी कर सकते हैं श्रोताओं। और आज ख़ास हम बात कर रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर श्रोताओं, और पर्यावरण के साथ साथ पशु पक्षियों की सुरक्षा भी हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पशु पक्षी जो है प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्रोताओं, मधुमक्खियाँ जो हैं वो परागण करती हैं जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ता है। पक्षी कई हानिकारक कीड़ों को नियंत्रित करते हैं। जंगलों में रहने वाले जीव प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला को संतुलित रखते हैं। और श्रोताओं, आजकल देखा गया है कि जब भी हम लोग रात के समय कहीं भी रोड पर निकलते हैं तो बहुत सारे जंगली जानवर जो हैं वो शहर तक यानी कि सड़कों तक आ पहुंचते हैं। किस लिए? क्योंकि अब जंगलों में हमारा कब्जा है, यानी कि हम लोगों ने जंगल छोड़े ही नहीं हैं। जब हम उनके घरों में घुसेंगे तो वो लोग हमारे घरों में भी तो ज़रूर घुसेंगे, इसलिए उनके घर के साथ छेड़छाड़ ना की जाए तो बेहतर है। उनके जो जंगल हैं उनका घर है और उन्हें वैसे ही रहने दिया जाए तो हमारे लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो श्रोताओं, पर्यावरण संरक्षण पर स्थानीय कार्यक्रम जो हैं हमें आयोजित करने चाहिए और स्कूल और कॉलेजों में भी जागरूकता अभियान जो है वो चलाए जाने चाहिए। बच्चों को स्कूल में कॉलेज में, खैर कॉलेज में तो वो बच्चे पढ़ते हैं जिन्हें समझ होती है पर्यावरण की और अपने जीव जंतुओं के बारे में, लेकिन स्कूलों में ज़रूर बच्चों को इस चीज़ के बारे में हमें समय समय पर ज़रूर पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए। और स्कूलों में ही नहीं, घरों में भी हमें उन बच्चों को अपने पर्यावरण के बारे में बताना चाहिए। लोगों को प्लास्टिक का उपयोग करने के लिए हमें मना करना चाहिए, कम से कम हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा कूड़ा ना इकट्ठा करें जैसे कि प्लास्टिक है। और हमें अपने कचरे का, कूड़े का जो निपटान है वो भी सही तरीके से करना आना चाहिए। तो श्रोताओं, हम लोग आज के दिन क्या कर सकते हैं? अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं, जल और बिजली की बचत भी हमें कर सकते हैं। अगर हमसे पेड़ पौधे नहीं भी लगे तब भी हमें घर में रहकर भी हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम अपने पर्यावरण की ही रक्षा करते हैं। जल है, बिजली की बचत कर सकते हैं, पशु पक्षियों को नुकसान ना पहुंचाए। गर्मियों में पक्षियों के लिए पानी रखें, दाना रखें। आजकल गर्मियां हैं और गर्मियों में नदी नाले जो हैं वो ज़्यादातर सूख जाते हैं और पशु पक्षी जो हैं उन्हें पानी की जब प्यास लगती है तो वो जब नदियों में पानी होगा तब तो उस तरफ रुख कर लेते हैं, लेकिन जब नहीं होता तो कहीं ना कहीं उन्हें भी तलाश रहती है पानी की। तो ऐसे में हम अपने छतों पर जो है वो पानी का कोई बर्तन रख सकते हैं, थोड़ा बहुत दाना जो भी आपके पास है वो भी आप रख सकते हैं जिससे कि हमारे जो पक्षी हैं उनका जो जीवन है वो भी चलता रहे। तो श्रोताओं, पर्यावरण के साथ साथ हमें बहुत सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए और हम ये भी ख्याल रखते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं उन्हें इंतज़ार रहता है गीतों का, तो बातों को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कार्यक्रम में एक और प्यारा सा गीत, तीसरी कसम। श्रोताओं, इस फिल्म का गीत अब आप सुनेंगे आप सभी के रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला अभी आप सभी सुन रहे हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला की ओर से। और अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। श्रोताओं, कई गीत सिर्फ और सिर्फ गीत नहीं होते, बहुत कुछ उनमें छुपा रहता है, बहुत कुछ वो कहते हैं। और ये गीत भी ऐसा ही था, सजन रे झूठ मत बोलो। बिल्कुल झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, जो है वही बोलना चाहिए, लेकिन कई बार हम लोग झूठ बोल देते हैं। कहते हैं ना कि किसी अच्छे काम के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो झूठ झूठ नहीं होता, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि सच ही बोला जाए। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला अभी आप सुन रहे हैं। और ये कार्यक्रम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसका समय रहता है शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का। और ये 2 घंटे का सफ़र हम आपके साथ बिताते हैं, आपके साथ करते हैं बातचीत और जानकारियां भी आप तक पहुंचाते हैं, साथ ही आपका मनोरंजन जो है वो भी हम करवाते हैं। तो श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और गीत संगीत का जो सिलसिला चला हुआ है उसे बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत कृष्णा फिल्म से। आवाज़ें दी हैं श्रोताओं इस गीत को कुमार शानू और साधना सरगम ने।

0: श्रोताओं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अब समय है समाचारों का, तो चलते हैं सुनते हैं समाचार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के विकास को गति मिलेगी और लोगों का जीवन बेहतर होगा। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
2: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक रही है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से जबरन कब्जा कर रखा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानून

और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% रहने का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत को SU-57 लड़ाकू विमान कार्यक्रम में शामिल करना चाहता है। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: श्रोताओं, आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर। समाचारों के बाद और इन संदेशों के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। सभी श्रोताओं को एक बार फिर से सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार, गुड इवनिंग। श्रोताओं, शाम का ही समय है और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं और कार्यक्रम में फिर से हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक प्यारे से गीत के साथ। तीसरी मंजिल इस फिल्म का गीत अभी आ रहा है आप सभी की रेडियो सेट पर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में आप सुन रहे हैं प्यारे प्यारे गीत। श्रोताओं, ये शाम का समय होता है और शाम के समय में हमें थोड़ा सा समय जो है वो मिलता है अपने लिए, अपनों के लिए। तो समय अपने साथ ज़रूर बिताएं और अपनों के साथ भी समय ज़रूर बिताएं। दिन भर में आपने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसा फील किया, ये ज़रूर अपने अपनों को ज़रूर साझा करें उनके साथ और बातचीत करें। साथ ही श्रोताओं, शाम का ये समय होता है और सभी अपने अपने काम में लगे होते हैं और कुछ श्रोता हमारे कहीं ना कहीं अपने घर की ओर या कहीं भी अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं, और ऐसे में अगर रेडियो गुंजन धर्मशाला चला हो और प्यारे प्यारे गीत सुनने को मिल जाए तो सफ़र का अपना ही मज़ा है। श्रोताओं, बहुत सारे ऐसे श्रोता होते हैं जिन्हें कि सफ़र गीतों के साथ करना अच्छा लगता है, तो जिनके लिए, जिन्हें गीत अच्छे लगते हैं और सफ़र गीतों के साथ अच्छा लगता है, उनके लिए प्यारे प्यारे गीत हम लोग लाते रहते हैं और हम आपको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, हमेशा आपके साथ बने रहते हैं। तो चलिए फिर से आपके साथ हो लेते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। श्रोताओं, दुश्मन इस फिल्म का गीत भेज रहे हैं उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आपके सभी के रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत। और इस गीत के बाद श्रोताओं, थोड़ी सी बात हम करेंगे सबसे कीमती चीज़ की। और सबसे कीमती समय आज के समय में कुछ है तो वो है समय। धन जो है वो खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता है। श्रोताओं, आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अक्सर समय की अहमियत को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये काम कल कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे यही आदत हमारे सपनों और लक्ष्यों के बीच रुकावट बन जाती है। तो श्रोताओं, जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। सफल लोगों की एक खास आदत होती है, वे अपने हर पल का सही उपयोग करते हैं। वे जानते हैं कि दिन के 24 घंटे सभी को बराबर मिलते हैं, फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन उसका सदुपयोग करता है। श्रोताओं, समय हमें अनुशासन सिखाता है। समय पर उठना, समय पर काम करना और समय पर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना हमें सफलता के करीब ले जाता है। तो युवाओं से हम खास करके यही कहेंगे कि अपने समय का सही उपयोग करें और अपने कल के भविष्य को उज्जवल बनाइए। जो समय बीत जाएगा वो समय वापस नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ हमारे पास रह जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ पछतावा कि काश हमने ये काम उस समय कर लिया होता। तो ये काश जो है ये बहुत बड़ा शब्द है श्रोताओं, और हम यही चाहेंगे कि आपको काश ना भूलना पड़े। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में आप बने हुए हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत, कल की आवाज़। इस फिल्म का गीत कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज़ों में।

बिल्कुल श्रोताओं, आप सभी भी हमारे साथ ही हैं और आप सभी हमारे साथ हैं, हमें अच्छा लगता है और उम्मीद करते हैं आपको भी हमारा साथ अच्छा लगता होगा। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अब समय है एक छोटे से अंतराल का। इस छोटे से अंतराल के बाद फिर से लौटेंगे हम और कार्यक्रम में आपके साथ करेंगे बातचीत। तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ, और इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में हम फिर से आगे बढ़ेंगे और आपको सुनवाएंगे पहले एक प्यारा सा गीत, पापा कहते हैं। श्रोताओं, इस फिल्म का गीत अब तक पहुँचा रहे हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

श्रोता कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। और देखिए ये कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला जिसका समय रहता है 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का, और समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो श्रोताओं ये जो घड़ी है ये टिक टिक टिक टिक कर कर चलती जाती है और हम उस मुकाम पर पहुँच जाते हैं जहाँ हमारे पास समय थोड़ा रहता है। तो श्रोताओं ज़िंदगी में तो सफ़र पता नहीं कितना बाकी है, लेकिन हमारे पास आपके साथ बात करने के लिए अब समय जो है इस कार्यक्रम में कम ही है। तो वक्त की बात हम समय की बात कर रहे हैं तो ज़रूर समय पर एक छोटी सी बात और कहना चाहेंगे। समय का चक्र जब घूमता है ना श्रोताओं तो सबकी अकड़ जो है वो ढीली कर देता है। जिन महलों में बैठ कर हुक्मरानों ने के नाम का सिक्का चलता था आज वो महल खंडर बन गए हैं। दीवारों में पीपल के पेड़ उगाए हैं और जिन कपड़ों पर अंग्रेज़ों का अभिमान था उन्हें आज बैंड बाजे वाले पहनते हैं। जिन आलीशान हवेलियों के दरवाज़ों पर कभी हाथियों और घोड़ों की कतारें लगी रहती थी, चौपालों पर महफिलें सजती थी, आज वहाँ चमगादड़ बसेरा करते हैं। वक्त ना तो किसी की अकड़ छोड़ता है और ना ही किसी का गुरूर। ये एक ऐसा तराजू है जो हर चमकती चीज़ को एक दिन मिट्टी में मिला ही देता है। इसलिए बड़े बुज़ुर्ग कहकर गए हैं कि इंसान को अपनी कामयाबी या ऊंचे वक्त पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। बिल्कुल श्रोताओं ये बहुत बड़ी बात है और हमें इसे समझ लेना चाहिए। तो इन बातों के साथ हम अब यहाँ रुकेंगे और फिर से चलेंगे कार्यक्रम में गीत संगीत की ओर, और आपको सुनवाएंगे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में दो चोर फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने स्वच्छ पर्यावरण व नशा मुक्त हिमाचल के लिए सामूहिक प्रयासों पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, चिट्टा व अन्य नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों को नहीं बख्शेगी सरकार। भाजपा का आरोप, पंचायती राज व स्थानीय निकाय चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस नेता बौखलाहट में कर रहे हैं अनाप शनाप बयानबाजी। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा, प्रदेश के आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों को जल्द मिलेंगी एक्सरे व अल्ट्रासाउंड मशीनें, खरीद प्रक्रिया पूरी। और केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा राज्य भर में चलाएगी महाजनसंपर्क अभियान। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश की प्राकृतिक धरोहर स्वच्छ पर्यावरण व नशा मुक्त हिमाचल के लिए सामूहिक प्रयासों पर बल दिया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से स्वच्छ पर्यावरण व नशा मुक्त जीवन विषय पर आयोजित मिनी मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्वच्छ पर्यावरण और शुद्ध वायु से समृद्ध राज्य है और विकास कभी भी पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्त समाज ही उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है।
1: विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ। आज हमें ये समझना चाहिए, पृथ्वी को हमने माँ माना और अगर माँ है तो हम हैं। उसके अस्तित्व के कारण से ही हम सभी यहाँ पर हैं। हमारे सभी की जिम्मेवारी बनती है कि हम सब किस प्रकार से अपनी मातृभूमि और माँ की रक्षा करें। इसलिए जरूरी है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं, की रक्षा करें। दूसरा, बढ़ते हुए जो नशे बचाने के लिए बच्चों ने और हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा काम किया है, मैं इसके लिए सभी ऑफिसर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपके प्रयास के कारण से ऐसा संभव हो सका।
0: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विश्व पर्यावरण दिवस पर शिमला के रिज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में सभी वर्गों से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पूरे उत्तर भारत को स्वच्छ जल और शुद्ध वायु उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिस कारण इसे लंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने सभी से पर्यावरण संरक्षण को जीवन शैली का हिस्सा बनाने का आग्रह भी किया।
2: हमारी सरकार को जो नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ चंडीगढ़ है, उसने जो हमारी प्लानिंग है योजना को भी अप्रिशिएट किया। पहली बार चिट्टा को पंचायत स्तर पर मार्किंग की गई है, जो यहाँ ज्यादा चिट्टा वाले हैं या नशा करने वाले उसको रेड कैटेगरी में, येलो कैटेगरी और ग्रीन कैटेगरी में सम्मिलित किया गया है।
0: इस दौरान मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान को लेकर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चिट्टा व अन्य नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री ने ओकओवर शिमला में चेनार वृक्षारोपण अभियान के पहले चरण का शुभारम्भ भी किया। राज्य सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल, समावेशी व सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत अपशिष्ट प्रबंधन, कचरा संग्रहण के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और अन्य जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल विकास प्राथमिकताओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा। समझौते में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण को भी शामिल किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सहयोग राज्य को सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि ये समझौता हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य और हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास के एक आदर्श के रूप में विकसित करने की प्रदेश सरकार की परिकल्पना के अनुरूप है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के असंगठित अपशिष्ट प्रबंधन कर्मियों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से सफाई मित्र योजना का भी शुभारम्भ किया। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश के आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में जल्द ही एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनें उपलब्ध होंगी, जिससे लोगों को घर द्वार के समीप बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। शिमला में आज एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनों की खरीद से जुड़ी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान, जबकि लाहौल स्पीति और भरमौर क्षेत्रों में दो दो संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आधुनिक स्वास्थ्य अधोसंरचना और उन्नत चिकित्सा उपकरणों की खरीद पर लगभग 3,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRnews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा है कि प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज व स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा को मिली प्रचंड जीत से कांग्रेस सरकार के मंत्री बौखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तुष्टिकरण की राजनीति अब खुलकर सामने आ रही है। त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि चुनावों में लगातार हार और जनता के बीच घटते जनाधार के कारण कांग्रेस नेता धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर विवादित बयान देकर ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं।
3: प्रदेश में हालिया संपन्न हुए पंचायती राज चुनावों में जहां भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है, वहां कांग्रेस पार्टी को, जिनकी प्रदेश में सरकार है, करारी हार का सामना करना। कांग्रेस की इतनी बड़ी हार हुई, इनके मंत्री अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। सनातन हमारी संस्कृति, हम इसको मानने वाले लोग, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और उनकी ये तुष्टिकरण की राजनीति को दर्शाता है।
0: इस बीच भाजपा की राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा है कि प्रदेश में हाल ही में हुए स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भाजपा को मिले भारी जन समर्थन से कांग्रेस की राजनीतिक विदाई यात्रा शुरू हो चुकी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से अब छुटकारा चाहती है और आने वाले समय में ये जन आक्रोश और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में युवा चेहरे जीत कर आए हैं। शिमला में आज उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी जन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर आगे बढ़ेगी। विक्रमादित्य सिंह ने इन चुनाव के नतीजों को लेकर भाजपा के दावों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं हुए, ऐसे में भाजपा का जीत का दावा करना उचित नहीं है।
4: जो हाल ही में हमारे पंचायती राज के चुनाव प्रदेश के अंदर हुए हैं, उसमें बहुत से हमारे युवा चेहरे जो है इस बारी जीत कर आए हैं, चाहे वो प्रधान है, उप प्रधान है और जिला परिषद में है या पीडीसी में है, और इसमें नई सोच निकल कर आती है। ऐसे चेहरे जो हम आम रूप से नहीं देखते हैं, मगर वो इन चुनावों के माध्यम से हमको मिले हैं, और मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि बहुत से यंग प्रोफेशनल जो है इसमें जीत कर आए हैं। हमने उनको पूरा विश्वास दिलाया है कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोगों का, जितने भी चुनाव में कराए हैं, उनका पूरा समर्थन करेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे।
0: विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती के मौके पर 23 जून को रिज मैदान पर प्रो बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें भारत सहित 6 देशों के प्रतिभागी भाग लेंगे। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन भारत क्षेत्र जोन 2 का आयोजन हरियाणा विधानसभा द्वारा 8 से 10 जून तक चंडीगढ़ विधानमंडल में किया जाएगा। सम्मेलन में 5 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और पंजाब के पीठासीन अधिकारी भाग लेंगे। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के दौरान विकसित भारत 2047 राष्ट्रीय लक्ष्य को पाने में जागरूक नागरिक, समाज और युवा विधायकों की भूमिका विषय पर मंथन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 7 जून को 12 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा राज्य भर में महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन में ये जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के दौरान पार्टी केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएगी। बिंदल ने कहा कि अभियान के प्रथम चरण में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 12 जून को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शिमला में 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने स्वच्छ पर्यावरण व नशा मुक्त हिमाचल के लिए सामूहिक प्रयासों पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, चिट्टा व अन्य नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों को नहीं बख्शेगी सरकार। भाजपा का आरोप, पंचायती राज व स्थानीय निकाय चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस नेता बौखलाहट में कर रहे हैं अनाप शनाप बयानबाजी। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा, प्रदेश के आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों को जल्द मिलेंगी एक्सरे व अल्ट्रासाउंड मशीनें, खरीद प्रक्रिया पूरी और केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा राज्य भर में चलाएगी महाजनसंपर्क अभियान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और समाचारों के बाद अब कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का समय भी यहीं पर समाप्त होता है। श्रोताओं, कार्यक्रम में जाते जाते आपको सुनवा के जाएंगे आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत, दिल एक मंदिर फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। अब इस गीत के साथ ही अपनी रेडियो दोस्त सुषमा को दीजिए जाने की अनुमति। अच्छा जी, जय हिंद।
6: चिमारू के नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब इंसान हर किसी के लिए अच्छा करता है तब सबसे ज्यादा चोट भी उसे ही मिलती है। लोग उसके धैर्य को कमजोरी समझ लेते हैं, उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं और उसे अकेला देखकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर याद रखो, अकेला वही किया जाता है जिसमें भीड़ से अलग चलने का साहस हो। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल होते हैं, पत्थर भी उसी पर सबसे ज्यादा फेंके जाते हैं। इसलिए शांत रहो अर्जुन, क्योंकि समय जब उत्तर देता है तब लोगों का घमंड अपने आप शांत हो जाता है।
2: अगर तुम्हें लगता है मैं ज्यादा कलेश करती हूँ, पहले जाके दूसरों की बीवियाँ देखो।
3: वो अलग ही लेवल का बंदा था।
4: अरे बाप रे।

तुम्हारे गम की डली उठाकर ज़बां पे रख ली है, देखो मैंने ये कतरा कतरा पिघल रही है, मैं कतरा कतरा ही जी रहा हूँ।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
2: हर घर में सूर्य।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब इंसान हर किसी के लिए अच्छा करता है तब सबसे ज्यादा चोट भी उसे ही मिलती है। लोग उसके धैर्य को कमजोरी समझ लेते हैं, उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं और उसे अकेला देखकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर याद रखो, अकेला वही किया जाता है जिसमें भीड़ से अलग चलने का साहस हो। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल होते हैं, पत्थर भी उसी पर सबसे ज्यादा फेंके जाते हैं। इसलिए शांत रहो अर्जुन, क्योंकि समय जब उत्तर देता है तब लोगों का घमंड अपने आप शांत हो जाता है।
2: देखो,
3: वो अलग ही लेवल का बंदा था।
4: अरे बाप रे,

सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारी से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

92.2 MHz पर यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब इंसान हर किसी के लिए अच्छा करता है तब सबसे ज्यादा चोट भी उसे ही मिलती है। लोग उसके धैर्य को कमजोरी समझ लेते हैं, उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं और उसे अकेला देखकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर याद रखो, अकेला वही किया जाता है जिसमें भीड़ से अलग चलने का साहस हो। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल होते हैं, पत्थर भी उसी पर सबसे ज्यादा फेंके जाते हैं। इसलिए शांत रहो अर्जुन, क्योंकि समय जब उत्तर देता है तब लोगों का घमंड अपने आप शांत हो जाता है।
2: अगर तुम्हें लगता है ना मैं ज्यादा कलेश करती हूँ, पहले जाके दूसरों की बीवियां देखो।
3: वो अलग ही लेवल का बंदा था।
4: अरे बाप रे।

92.2 MHz पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।